0: बाज लोग अटकल पक्चू कहेंगे कि वो तीन थे और चौथा उनका कुत्ता था, और बाज कहेंगे कि वो पांच थे और छठा उनका कुत्ता था, और बाज कहेंगे कि वो सात थे और आठवां उनका कुत्ता था। कह दो कि मेरा परवरदिगार ही उनके शुमार से खूब वाकिफ है, उनको जानते भी हैं तो थोड़े ही लोग जानते हैं, तो तुम उनके मामले में गुफ्तगू न करना मगर सरसरी सी गुफ्तगू, और न उनके बारे में उनमें से किसी से कुछ दरियाफ्त ही करना।
1: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا
0: اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا۔

0: और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो।
1: والأرض وضعها للأنام
0: और उसी ने खलकत के लिए जमीन बिछाई।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
0: उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: कुल मन अलैहा फान,
0: जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: ऐ
0: दोनों जमातों, हम अनकरीब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? इनमें दो चश्मे बह रहे हैं,

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? और इन बागों के अलावा दो बाग और हैं,

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: मुदहम्मतान,
0: दोनों खूब गहरे सब्ज़।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे? इनमें दो चश्मे उबल रहे हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? इनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं।

0: तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। हर चीज जो आसमानों और जमीन में है उसकी तस्बीह कर रही है और वो जबरदस्त और हकीम है। ए अल्लाह पाक, तू रहमान है, तू रहीम है। हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हमें माफ फरमा। हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा। ए अल्लाह पाक, इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान परेशान हैं, हमारे वतन के अवाम भी परेशान हैं। हमें इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल। अपने प्यारे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में अमान दे दे, हमारे दिलों को मोहब्बत से भर दे। तू रहमान है, तू रहीम है, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जो मातूब नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं है। ऐ हमारे रब, हमसे भूल चूक में जो कसूर हो जाएं, उन पर गिरफ्त न कर। मालिक, हम पर वो बोझ न डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाले थे। परवरदिगार, जिस वार को उठाने की ताकत हम में नहीं है वो हम पर न रख। हमारे साथ नरमी कर, हमसे दरगुजर फरमा, हम पर रहम कर। तू हमारा मौला है, काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। ए करीम, हमें माफ फरमा। तू रहमान है, तू रहीम है। हमारी दुआएं अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके में कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله العظيم.

101 FM.

पांच दरियाओं के धारों की अमी है ये जमीन, इसके पासी हैं कुशादा दामन दिल और जबीन। लर्जा है दश्तो बयाबां देखकर हैबत बलोच, रस्मगाहे जिंदगानी में है ये नु

सिंध है रोशन सितारों की तजल्ली का जहां, करिया करिया कूचा कूचा हर गली है कहकशां, हौसले हैं पर्वतों से अज़्म है परवाज़ में, खित्ता पख्तून है मखमूर हुस्ने नाज़ में।

101 FM。

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
2: 101 FM।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: 101 FM।
4: A-level with zero tuition fee, 100% future, Bhagat International College, Twin Cities top A-level institute, built on discipline, driven by academic excellence. Learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi. Get merit stipends and financial support. Bhagat International College does not just teach, it builds leaders. Admissions open at Bhagat International College, Gulberg Greens, Islamabad. Call now,
5: 0330-511-0099. 101 FM.
6: Live, all the way live from the federal capital city of Pakistan. This is FM 101.
7: This is FM 101.
2: 101 FM.

0: This is FM 101.
1: सुनते रहिए FM 101.

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: दिस इज FM 101.1।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: This is FM 101.
1: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने पाकिस्तान और बेलारूस के मुश्तरका वजारती कमीशन के नवे इजलास के दौरान होने वाले मुफीद मुजाकरात पर इत्मीनान का इजहार किया है। मनसूबाबंदी के वजीर ने निजी शोबे पर जोर दिया है कि वो आलमी मंडियों में पाकिस्तान की मौजूदगी बढ़ाने के लिए फाल किरदार अदा करे। पॉप गुलुकारा नाजिया हसन की 26वीं बरसी आज मनाई जा रही है। और मुल्तान में नेशनल चैंपियंस कप में आज पाकिस्तान ब्लूज पाकिस्तान व्हाइट्स के खिलाफ खेलेगी।
1: खैर तो है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो?
2: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है।
1: बैंक जाने की क्या जरूरत है, इन्वेस्ट पार्क है ना?
2: इन्वेस्ट पार्क?
3: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार। इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें।
2: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा।
4: दिस इज FM 101.1।
5: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. This is FM 101.
7: I love FM 101.
8: Suror Sangeet, Sazo Awaaz. आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस टपाल दानेदार।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: सुनते रहिए FM 101।
0: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस टपाल दानेदार।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

ये दुनिया झूठी लोग लूट लेते अपने ही यहाँ। सर उठा के चल मगर कदम भी देख कर उठा। दुनिया बढ़ गई है सही और गलत की जंग में। मैं ना सही ना मैं गलत मेरा न

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: शुक्रिया,
3: आपने FM 101 ट्यून किया।
4: दिस इज FM 101।
3: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार। पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
3: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
2: I love FM 101।

0: आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सोना यूरिया ग्रैनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रैनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।
2: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: This is FM 101.
1: I love FM 101.
2: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
3: सुनते रहिए FM 101. 101. 101.

0: This is FM 101.
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार.
2: Smile and dial 111 FM.

0: पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस टपाल दानेदार।
1: सुनते रहिए FM 101 101।

यारा तू नजर मिलाना जालिम दुनिया लोग गलत लूट ना जाना कहीं दूर प्यार दी गई।

0: 101.
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
2: This is FM 101.
3: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
2: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: This is FM 101.
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
3: Thank you.

0: पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस टपाल दानेदार।
1: सुनते रहिए FM 101 101।

0: This is FM 101.
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
2: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस टपाल दानेदार।
1: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: दिस इज एफएम 101.1।

0: basta.
1: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
2: सुनते रहिए FM 101 101।

सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: This is FM 101.
1: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
2: सुनते रहिए FM 101.

0: This is FM 101.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: आई लव एफएम 101।

0: This is FM 101.
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
2: I love FM 101.

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: देखिए फरार इतवार रात 8 बजे।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।
2: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
3: I love FM 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सोना यूरिया ग्रैनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रैनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत। कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।
1: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया।
2: आई लव एफएम 101।
3: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
4: सुनते रहिए एफएम 101 101 101।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101. A belly belly or shower shower.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

listening to FM 101, a Bale Bale Oshawa Shawa.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादे खरीदें और पाए बेशुमार कीमती इनाम।
4: सुनते रहिए FM 101 101 101।

मैं संगीता, आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त की आज़ादी आप सबको मुबारक हो। ये वो दिन है जहां हम लोग आज़ाद हुए थे, और आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। ये कदर तो उन लोगों को मालूम होती है जो बाहर बैठे हुए हैं।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: Welcome to Islamabad.
1: सुनते रहिए FM 101 101।

0: back after this short commercial break. Stay with us.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
3: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
4: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: We'll be back after this short commercial break. Stay with us.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: And then there's magic. One above FM 101.

0: We'll be back after this short commercial break. Stay with us.
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार.
0: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
2: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मेयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार. सोना यूरिया ग्रैनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए.
3: देयर्स म्यूजिक एंड देन देयर्स मैजिक. वन अबव FM 101.
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार.
3: There's music and then there's magic. One above. FM 101.
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार.
3: There's music and then there's magic. One above. FM 101.

ऐसे वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ लूं सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो भर

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार.
0: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात.
0: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार.
0: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: खजाना ने डिजिटल इकदामात आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। कौम कल पाकिस्तान का 80वां योम आजादी मिली जोश व जज्बे से मनाएगी। और अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने खलीजी खित्ते में तनाजे के जामे और देरपा हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One above, FM 101.
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: from the house of 6B Food Industries.
1: FM 101, Naal Naal Sade, Te Naal Naal Tuade. क्यों जी ये कोई शक है क्या?
2: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।

0: FM 101 naal naal sade te naal naal tuade. क्यों जी कोई शक है क्या?
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।

0: FM 101 naal naal sade te naal naal tuade. क्यों जी कोई शक है क्या?
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

मैं संगीता आप सबकी खिदमत में, अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त की आज़ादी आप सबको मुबारक हो। ये वो दिन है जहां हम लोग आज़ाद हुए थे, और आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। ये कदर तो उन लोगों को मालूम होती है जो बाहर बैठे हुए हैं।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: from the house of 6B Food Industries.
1: FM 101, Naal Naal Sade, Te Naal Naal Tuade. क्यों जी, ये कोई शक है क्या?
2: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।

0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ
1: सोना यूरिया ग्रैनुलर जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रैनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।
0: FM 101 नाल नाल साडे ते नाल नाल तुवाडे क्यों जी कोई शक है क्या?
2: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

0: from the house of 6B Food Industries.
1: FM 101, Naal Naal Sade, Te Naal Naal Tuade. क्यों जी ये कोई शक है क्या?
2: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ
1: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रैनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।
0: FM 101 नाल नाल साडे ते नाल नाल तुवाडे क्यों जी ये कोई शक है क्या?
2: पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ वजाहत नसीम, आपके लिए मोहब्बतों का पैगाम लाई हूँ। आप सबको जिसमें आज़ादी मुबारक हो, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, आप सबको खुशहाल रखे और हम सब आपस में खुशियाँ बांटें।

सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: from the house of 6B Food Industries.
1: सुनते रहिए FM 101 101 101.

सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: from the house of 6B Food Industries.
1: Sunte rahiye FM 101.

सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: from the house of 6B Food Industries.
1: Sunte rahiye FM 101.

सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वजाहत नसीम, आपके लिए मोहब्बतों का पैगाम लाई हूँ। आप सबको जिसमें आज़ादी मुबारक हो, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, आप सबको खुशहाल रखे और हम सब आपस में

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मीर हामिद अली। पूरी कौम को 14 अगस्त की आज़ादी का दिन मुबारक हो। आपका हम वजन अपने तमाम कौम को अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे और उसके दिन दोगुनी या चौगुनी तरक्की का फरमाए। आमीन। तो मानो साय

0: this music, and then this magic. One Above, FM 101.
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार.
0: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: रात के 10 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। फातिमा तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने नॉर्वे की कंपनियों को पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश के शोबे में सरमायाकारी की दावत दी है। पाकिस्तान और नॉर्वे ने इस अज़्म का इआदा किया है कि अफगान सरजमीन को दीगर ममालिक को धमकाने या उन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। वजीर खजाना ने डिजिटल इकदाम आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। पाकिस्तान और काजिकस्तान ने मौजूदा माहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर अमल दरामद तेज करने पर इत्तेफाक किया है।
1: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
2: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार। हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।

0: FM 101.
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
0: There's music and then there's magic. One above FM 101.
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मीर हामिद अली। पूरी कौम को 14 अगस्त की आजादी का दिन मुबारक हो। आपका हम वजन अपने तमाम कौम को अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे और उसके दिल दोगुनी याद दोगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जहांगीर और आप सबको पता है कि जश्न आजादी हम भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी आन है, पाकिस्तान है तो हमारी शान है। पाकिस्तान जिंदा।

0: from the house of 6B Food Industries.
1: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
2: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार.
1: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
3: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मीर हामिद अली. पूरी कौम को 14 अगस्त की आज़ादी का दिन मुबारक हो. आपका हम वजन अपने तमाम कौम को अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ. अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे और उसके दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए. आमीन. तो मानो साया

0: पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस टपाल दानेदार।
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.
0: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस टपाल दानेदार।
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खान इसके।

عرض پاک مرکز ہے، قوم کی امیدوں کا۔

0: ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके। बहुत शुक्रिया।
1: वाह वाह वाह,
0: मजा आ गया भाई। नाइस।
1: जहाँ पे ऐसे वो बंदा कह देता रा रा रा रा रा रा रा। समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आपके जज्बात को। कोई बात नहीं, बाकियों को पता नहीं चला लेकिन मुझे थोड़ा सा पता चला। मुझे थोड़ा सा पता लगा,
2: बात समझ आ गई। ये तो मेरे पास लगेगा,
1: मुझे पता चल गया क्या हुआ
2: बारीकी। पता है कि फिर कॉन्फिडेंस में कवर भी तो किया ना। हां नहीं, वो ये जो बंदा ट्रैफिक में फंसा है ना, उसको फर्क भी नहीं पड़ता क्या
1: चक्कर। हां कवर कर लिया जी। अभी यहाँ पे बहुत अच्छा आपने अनडाउटेडली रहमान बहुत अच्छा गाते हो।
3: थैंक यू।
1: और अल्लाह आपको इसी तरह रखे। एंड डू मेंशन यार, आप कहाँ पे अपलोड करते हो आपकी शॉर्ट्स वीडियोस? अपना जरा अकाउंट भी मेंशन करो।
3: मेरे तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे AR नासिर के नाम से, AR नासिर ऑफिशियल के नाम से मैं अपने सारे अपलोड्स करता हूँ। और जितने भी सामईन हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मुझे वहाँ पर मेरे साथ कनेक्ट करें और इंशाल्लाह वहाँ पर आपकी फरमाइशें भी हम पूरी करेंगे।
1: हाँ, और अगर बुकिंग करनी हो ना आपने तो मेरे से रابطہ करना।
2: अच्छा
1: स्पेशल कंसेशन लेके दूंगा, ट्रस्ट मी।
2: वो तो फिर आप जो कंसेशन उसका आधा मुझे मिलना है।
1: मैंने कहा था यार अपना जानने वाला, खैर
2: जानने वाला
1: यार, जानने वाला है।
4: इतना इतना तो बनता है ना, इतना तो
1: उसे कुछ
2: आवेगा ना, बस तल्लुक में मारेगी यार,
1: तल्लुक में मारेगी। एनीवे जी, थैंक यू वेरी मच फिजा राजपूत। और आपका बाजा कहाँ है मेरा?
2: नहीं बाजा, ये चार सामने बैठे थे
1: मैं। बैठे हैं बिल्कुल। कवल नाह साहब ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। आप सबको सलाम दे रही हैं, मोहम्मद इरफान सबको सलाम दे रहे हैं जी।
2: वालेकुम सलाम।
1: और सर जी, मेरी सिस्टर को ग्रीन कलर पसंद है, चलें ठीक हो गया, हम इस पर बात करेंगे जी। और थैंक यू वेरी मच जी, जुबिया शफीक ने इंडिपेंडेंस डे एडवांस सबको कहा। और ऐसे ही हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फॉर टुमारो। फिजा राजपूत कह रही हैं, सलमा राशिद साहिबा आई हैं, थैंक यू वेरी मच मैडम आपके मैसेज का। और इरफान कह रहे हैं, सर जी आज तो मैं बहुत खुश हूँ, चंडियाँ बिक गई हैं सारियाँ। चक्कर किस चक्कर में क्यों खुश है बताओ ना जरा। अच्छा, सबसे ज़्यादा अच्छा ठीक है फिजा राजपूत, आप ठीक है, अपनी अपनी पसंद होती है, आंखें ख़राब भी हो जाती है बंदे की। नौशीन राशिद हैं, सलाम किया, वालेकुम सलाम, पेशावर से सुन रही हैं। कौन कौन प्रेजेंटर है, ब्यूटीफुल वॉइस आप मैडम किसकी? मैं बारी बारी इन्हें कहता हूँ, अपना नाम लेते हैं, आपने सुन के बताना। मैडम बहुत पुरानी लिस्टर है, बहुत अच्छी हैं। और टीचिंग के जो है ना, ये इंस्टीट्यूट में हमारे पास लाहौर के बड़े फेमस इंस्टीट्यूट में ये रही हैं, वहाँ से रिटायर हुई क्वीन मैरी से। और लिटरेचर के साथ बड़ा पुराना लगाव है मैडम का, बड़े बड़े लिखारी जो है इनके घर आते रहे हैं।
2: क्या बात।
1: सो जिनमें कुदरतुल्ला शहाब जो है नाम है, बहुत बड़ा नाम है, उनका बीच जिक्र आता है। तो ये आपके सामने बारी बारी बोलते हैं, आपने बताना है किसकी आवाज़ अपना बताएं।
2: इट्स मी मोहसिन अली।
1: पूरा बोलो, आप हाल चाल पूछे मैडम।
2: अच्छा मैडम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, हैरियत से हैं।
3: ओके, दिस इज़ AR नासिर और मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आप हमें सुन रही हैं, थैंक यू सो मच।
5: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तो आपको पता है कि उमर फारूक है और मैं सर मैं आपका अपना छोटा सा आरजे उमर। मैम कैसी हैं? ठीक है, अभी मैं नया नहीं हूँ इसलिए छोटा सा फ्रेश हूँ।
4: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है और आपको बहुत बहुत सलाम मैम, कैसी हैं आप?
1: ओके दैट्स गुड। मैडम को काफ़ी ज़्यादा यहाँ से सलाम पहुँच चुके हैं। और ताहिरा मसूद साहिबा आई हैं, उन्होंने भी सलाम किया हुआ, लेकिन सलाम नहीं। थैंक यू वेरी मच जी, पाकिस्तान का जश्न आज़ादी सारों को मुबारक। आज डॉक्स वाइब्स हैं हमारे साथ, सलाम किया और कह रही हैं कि जी हैप्पी बर्थडे टू मी, केक भेजें फिर हम विश करेंगे।
2: बिल्कुल
1: है ना। और कल आप ट्रायो शो भी होगा, पता नहीं ट्रायो का होता है कि नहीं होता, मेरा ख्याल है कल चार लोग होंगे हम। अभी यहाँ पे एक मिली नगमा हम लगाते हैं। हारून की आवाज़ में, और उसके बाद वापस आते हैं हम थोड़ा अपनी डायरेक्शन भी सेट कर लें ताकि थोड़ा सा बेहंगम अच्छे अंदाज में करें हम शो को। तो आप कॉल करें 04 111 0011। हाँ, यहाँ पे कॉल भी ली जा सकती है इफ़ यू वांट मी टू टेक कॉल।
2: जी जी प्लीज प्लीज प्लीज कॉल
1: लें। अस्सलाम वालेकुम जी।
6: हेलो
1: हेलो, कौन है हमारे साथ?
7: जी मेरा नाम डॉक्टर सादत है, मैं इस्लामाबाद से।
1: कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं,
7: मैं अल्लाह का शुक्र है।
1: सर ये आपका नाम है या तखल्लुस है?
7: जी मेरा नाम है।
1: ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम, बहुत कम लोगों ने ये नाम रखा।
7: बस जी मैं तो ये कहूंगा कि मैं हमेशा अपने वालिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि मैं जिस स्कूल में रहा वहाँ पर मेरे अलावा कोई दूसरा सिर्फ सादत नहीं है, सादत अली असद, तो ये तीन कॉम्बिनेशन ना स्कूल में कभी हमारे रहे ना कॉलेज में ना आज तक जिंदगी में जिसके इदारे में रहे वहाँ ये दूसरा नाम किसी का नहीं है।
1: क्या तो बात है सर,
7: ये एक यूनिकनेस है।
1: छा गए सर, छा गए पैगाम को बात है। एनीथिंग
7: जी, मैं सिर्फ एक आपका तवज्जो चाहूंगा क्योंकि लकीली आज आप प्रोग्राम में बड़े अच्छे बाद आपसे बात हो रही है।
1: सर, सर।
7: हम पाकिस्तान के झंडे में अमूमन एक लफ्ज सुनते हैं कि जी जो सफेद रंग है ये अकलियतों की निशानी है।
1: जी
7: अच्छा, मैंने जब भी किसी से पूछा कि भाई अकलियतों से क्या मुराद, तो 99.9% लोगों ने यही कहा जी कि अकलियतों से मुराद हमारे जो मसीही बरादरी के लोग हैं, सिख बरादरी के जो पाकिस्तान में।
1: जी जी,
7: तो मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि यार ये तो आपको किसी ने बताया और आपने मान लिया, जबकि अगर हम फितरत के ऊपर जाएं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा तो हुज्जतुल वदा बड़ा क्लियर है कि किसी अजमी को अरबी पे, अरबी को अजमी पे, काले को गोरे, गोरे को काले का क्या मतलब। हम मसावात के असूलों की मनाफी कर देंगे अगर हम मजहब के तनाजुर में इंसानों की तफरीक अगर करेंगे तो, क्योंकि हम तो तमाम नबियों पे दुरूद व सलाम पढ़ते भेजते हैं, सीखते हैं उनसे, वो तो हमारे लिए निचले राह हैं
1: जी।
7: तो उनकी ये इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो सफेद रंग जो कि अमन की निशानी है उसका ताल्लुक हमने मजहब से जोड़ दिया, अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए रिप्लेस करके उसकी जगह पे हम वो लोग ले आए जो पाकिस्तान में अकलियत में है, मीन ख्वाजा सरा अकलियत में है, हमारे यहाँ माजूर लोग अकलियत में हैं, हमारे यहाँ युतमा मसाकीन बेवा खवातीन ये अकलियत में हैं। सफेद रंग दर हकीकत हम अपने मजहबी तालीमात या जो पुरानिक तालीमात है उसकी मुनाफी करते हैं कि जब हम मजहबी तनाजुर में सफेद रंग से मुंसलिक अकलियतों को मजहब के तनाजुर में देखें। तो मैं ये था कि आपके प्रोग्राम के तफैल एक तो ये एक मेरी सोच राय कि उन लोगों को हमारी जरूरत है जिनका ताल्लुक मजहब से नहीं इतनाफ से है और वो वाकई जरूरतमंद भी
1: अच्छा,
7: है।
1: अच्छा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है आपका,
7: जज़ाकअल्लाह। उसमें एक अजम रज़ादा बनता है कि हम तो ग्रीन की अभी आप इंशाल्लाह बात करेंगे, वो तो डेफिनेटली अल्लाह ने आपको अच्छी जुबान अच्छे अल्फाज दिए हुए हैं, बट मेरा सिर्फ है कि एक बात को और एंगल से अपने सुनने वालों को, वो यही वाली बात थी कि हम अगर एक अजम कर लें अगले साल तक कि हम इस वाइट रंग का हक अदा करेंगे और हम
1: बहुत अच्छा बहुत अच्छी बहुत अच्छा
7: बट दिस वाज द ओनली थिंग।
1: बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल जी,
6: बहुत अच्छी
1: थैंक यू वेरी मच जी। वालेकुम अस्सलाम, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉल जी। कलाम इलाही में भी खालिक कायनात ने यही इरशाद फरमाया कि गरीबों का, यतीमों का, मस्कीनों का हक ना मारो, उनका ख्याल करो। और वाइट कलर वैसे भी साइकोलॉजी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वैसे ही अमन, पीस एंड बैलेंस और इसका सिंबल होता है, और झंडे में भी ये इसी चीज़ को डिफाइन करता है। और अकलियत से मुराद ये है हर वो तबका जो मेजॉरिटी में नहीं है जो किसी तरह से मसले का शिकार है, और बड़ी अच्छी वजह
2: चाहे वो रिलीजियस हो चाहे वो कोई फिजिकल
1: भी है, और पाकिस्तान में रहते हुए उन सारों के लिए अमन का पैगाम है, उनको भी अकोमोडेट करता है ये वतन। और बड़ा अच्छा आपने डिफाइन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर द ब्यूटीफुल कॉल डॉक्टर साहब। अभी अगली कॉल एक और लेते हैं जी। हेलो,
8: अस्सलाम वालेकुम सर।
1: वालेकुम अस्सलाम जी।
8: सर आपसे बात मुखातिब,
1: कौन बोल रहा है?
8: सर बीर यूनस अली कानपुर से, बलोचिस्तान से।
1: बलोचिस्तान से, क्या हाल है भाई?
8: सर खैरियत है, अल्लाह के एहसान है। सर जब भी आपका हफ्ते में प्रोग्राम होता है दो दिन, तो सर मैं राइट नाइट की ड्यूटी है, तो मैं जो है हर हफ्ते में आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। सर
1: सर बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया।
8: रात भी सर माशाल्लाह आपका अच्छा प्रोग्राम था, रात तकरीबन 12 बजे तक मैं सुन रहा था, आपके पास कॉल लगा रहा था, पर कॉल आपके पास लग रही थी, आप अटेंड नहीं कर रहे थे।
1: सर माफी दे दें, मैं माफी मांग सकता हूं।
8: सर सबको सलाम है, आपके साथ जो आपके दोस्त बैठे उनको भी सलाम है। सलाम,
1: वालेकुम सलाम।
6: सलाम
8: सर, एक रिक्वेस्ट है सर आपको। सर
6: जी जी
1: बताएं, वैसे मैं बड़ा सख्त मानता नहीं
8: सर, आरजे डॉग साहब के साथ इतनी मोहब्बत रखते हैं हम, आपका प्रोग्राम पूरा सुनते हैं हफ्ते में दो दिन, तो आप अब इतना टाइम निकालते लाजमी, हम तो आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते सर।
1: सर बताएं बताएं।
8: सर वो मेरी मोबाइल चोरी हो गई थी, तो उसमें आपकी जो है ना पूरे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग थी वो मेरी चली गई सर।
1: हाय हाय, अच्छा।
8: तो सर वो अभी आपको जो है ना, आपको बड़ी गुजारिश से आपको जो है ना मेहरबानी रिक्वेस्ट है कि आप जो आने वाले हफ्ते में जो है ना एक वफा पे मौजू पे बात करनी है सर, प्रोग्राम करना है, एक जो है ना एतमाद पे और दूसरा जो सर मोहब्बत दोबारा होती या नहीं होती सर।
6: नहीं, ये टॉपिक्स तो बहुत संजीदा है। और
1: एतमाद, वफा, मोहब्बत दोबारा हो सकती है या नहीं। अच्छा ठीक है सर, ठीक है
8: सर, आने वाले हफ्ते में सर आप ये प्रोग्राम करोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर। क्यों सर, मैं रिकॉर्ड करके आपका जो है प्रोग्राम तनाई में सुनता रहता हूँ सर, मेरी नायक की दूर से सर।
1: जी ठीक है ठीक
8: है,
1: अल्लाह हाफिज।
6: क्या बात है सर,
9: वो एक्चुअली किसी और को भी सुनाना चाह रहे हैं।
1: अच्छा अभी अभी ये है कि यू गोना टेक द कॉल।
6: जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं?
10: सर अली शेर बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद से।
6: जी अली शेर भाई, कैसे हैं आप?
10: अल्लाह का शुक्र सर, मैं अच्छा हूँ, आप सुनाएं, आप ठीक
6: हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 14 अगस्त के हवाले से कोई पैगाम सामेईन को देना चाहेंगे, कोई चीज शेयर करना चाहेंगे?
10: सर पैगाम तो दूंगा, लेकिन सुनने वाले लोग भी मुतासर होंगे, इससे अच्छा है कि आपको भी आजादी मुबारक हो।
6: खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो।
1: आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी
6: लेकिन आपने कॉल करके ही कर दी, ये फेवर है आपका कि आपने इतनी ज़हमत दी फोन को।
10: नहीं अब बात सुनिए ना, तारीख को देखा जाए तो हम आजाद हैं।
1: नहीं बस मैं इसीलिए वो कहता हूँ ना कि हमने एंटी पाकिस्तान बात नहीं करनी, आप शो बंद करवाना चाहते हैं मेरा
10: तो अभी अगर हाल ही में देखा जाए तो हमसे बढ़ के बर्बाद कोई नहीं, आइए की यादें भी नहीं जाती। अब
1: मैंने यही कहा हजूर, आप शो बंद करवाना चाह रहे हैं?
6: जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सब की है पहचान, हम सब का पाकिस्तान।
10: बस ठीक है, जैसा चलना है।
1: हाँ बस अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, चीजें आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक होती हैं। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, थैंक यू वेरी मच। देखें एक चीज आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, अगर आप बात करते हैं ना यूरोप की, थोड़ा सा फिर मैं बार बार इस चीज को दोहराता हूँ, आप बात करते हैं यूरोप में बड़ी आपको तरक्की नजर आती है। 752 की बात है, अक्सर मैं यहाँ पे, एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा, शार्लमैन द ग्रेट, चार्ल्स द ग्रेट जिसका नाम है, उसका बार बार आपसे जिक्र करता हूँ, और जिसने वहाँ पे ईसाइत की बुनियाद रखी और पूरे यूरोप में जहाँ से ईसाइत फैली, उसने वहाँ पे पहली मरतबा 572 में एक घड़ी रिसीव की जो कि मुसलमानों की तरफ से उसे मौसूल हुई। उसके दरबार में वो जब घड़ी पहुंची तो दरबार में जितने लोग बैठे थे उन सारों ने कहा कि ये कोई जादू करके भेजा मुसलमानों ने, इसके आगे पीछे कोई चीज नहीं है और ये इसकी सुइयां हिलती,
9: ये चल रही है,
1: इसकी सुइयां हिलती हैं, इसे बाहर फेंक दो,
9: बिल्कुल ऐसे ही।
1: और फिर उसके बाद एक लंबा अरसा गुजरा, फिर वहां पे वो जंगो जदल कत्लो गारत बड़ा कुछ हुआ, फिर कहीं जाके यहाँ पे आज पहुंचे हैं। और उससे पहले का आप अगर सफर देखते आए ना तो 1857 की अगर बात करते हैं, जिसका अक्सर जिक्र तारीख में मिलता है जंग आज़ादी के हवाले से, 1857 से पहले अगर आप चले जाएं तो पहले ट्रैवल करते कितनी सदियां हैं, कितनी सदियां आपने पूरी दुनिया पर राज किया है। और फितरत का कानून ये है, हर अरूज को
9: जवाल है,
6: बिल्कुल ऐसी
1: आपने अपने इकदार छोड़े तो चीजें निकल गई। अभी 100-150 साल गुजरे नहीं है और आप परेशान हो गए
6: ऐसे ही।
9: और ये जो हजारों साल हुकूमत
1: आपने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है और दोबारा उसको वापस आने में
9: टाइम लगेगा,
1: थोड़ा सा टाइम लगेगा और चीजें ठीक होने में टाइम लगता है। ये नहीं है कि जादू की छड़िया आपने घुमाई और बस कहा ये डिसीजन हुआ कल जी फौरन ये चीजें बेहतर हो जाए, इट टेक्स टाइम। کوئی بھی ملک اٹھا کے مجھے دکھا دیں آپ. ہم بڑا ذکر کرتے ہیں, ہمارے بڑے مراسم ہیں جی, بہت سپر پاور ہے دنیا کی, لیکن سپر پاور نے کہاں سے سفر طے کرتے کرتے آج یہاں تک پہنچے ہیں. وہ بھی ایک صدیوں کا سفر ہے, ٹیکس ٹائم. سو جو آپ اور بھی مثالیں دی جاتی ہیں, فلاں ملک ہے, ہمارے ہمسایہ دوست ملک جو ہیں ان کی تہذیب اور وہ کب سے چلے آ رہے ہیں, ادھر وہاں پہ صرف شفٹ ہوا تھا, بادشاہی نظام سے گورنمنٹ ایک بنی تھی, ٹھیک ہے, اس سے چیزوں کا آنا ہونا اور چیز ہوتی ہے. اور پھر وہی بات ہے جو میڈم سلمہ کہتی ہیں اکثر, ہم پوائنٹ آؤٹ تو کر دیتے ہیں لیکن ہم نے اس ملک کو ان ریٹرن کیا دیا. ملک تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, وہ آپ کو رہنے کی جگہ دیتی ہے, آپ اس کا سینہ چیر کے فصلوں سے کھاتے پیتے رہتے ہیں. ان ریٹرن تو آپ نے دینا ہے نا اس وطن کو, ان ریٹرن آپ کیا دے رہے ہیں؟ تو اگر آپ اور میں محنت نہیں کر رہے, آپ اور میں اگر کچھ سیکھتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں تو یار یہ کیا ہے, ہم پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کوئی بات نہیں, ٹینشن نہ لیا کر یار, یہ گال زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں. وہی بات ہے, ایک ٹھیک ہو جائے نا سب ٹھیک ہو جاتا بھائی. وہ ایک آپ ہے, وہ میں ہوں, ہم جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے نا تو چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. سو مجھے کریکٹ کرنا ہے اپنے آپ کو. آج آپ دیکھیں بڑی بڑی اچھی سوسائٹیز آپ کو نظر آ رہی ہیں, وہ سوسائٹیز کا بہت اچھا سسٹم بنا ہوا ہے. کیوں بنا ہے؟ وہ کسی نے اوپر سے آ کے بنایا, آپ نے بنایا,
9: ہم نے ہی بنایا.
1: جہاں آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں, باقی بھی ہو جائے گا, ٹیکس ٹائم. اس کا نہیں, نیوز بریک ہے, ڈونٹ گو اینی ویئر.
11: رات کے 11 بجے ہیں, السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے, فاطمہ توفیق سے خبریں سنیے. پاکستان کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. اسلام آباد میں یادگار فتح کے مقام پر یوم آزادی کی شاندار تقریب جاری ہے. وزارت توانائی نے پاکستان کے پہلے نیشنل پاور سیکٹر انوویشن پروگرام کا آغاز کر دیا ہے. پاکستان اور قازقستان نے موجودہ معاہدوں اور تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے.
12: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: All right, جی, All right, we are back. اور وقت ہو چکا ہے 11:01. ایک منٹ ابھی یہاں پہ ایک نغمہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں, اور آپ لوگوں کے پیغامات ہم شامل کریں گے واپس آنے کے بعد. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار آل یور میسیجز جو لائف اسٹریم پہ ہیں. آج اسپیس DOX ڈاکس لکھیں گے, آپ کو لائف اسٹریم وہاں پہ مل جائے گی. یو کین ہٹ می ود یور کمنٹس. اور اس کے علاوہ کوئی بھی بات کرنا چاہے تو آپ SMS بھی کر سکتے ہیں. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جانا ہے, 101 لکھنا ہے, اسپیس دینی, اپنا نام اور پیغام لکھنا ہے, اس کو بھیج دینا 4471 پہ. اور پوسٹ ہے جی فیس بک پہ, FM 101 لاہور, FM 101 چینل پاکستان, دونوں جگہ آپ پوسٹ بھی سرچ کر کے کمنٹ کر سکتے ہیں. سو دل سے وی گونا انجوائے دس نمبر, لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس ایک کمرشل بریک ہے. اوکے, جانا نہیں, پہلے یہ سنتے ہیں پھر گانا لگاتے ہیں.
13: ہر پاکستانی کے دل کی پکار, چائے بنے بس ٹپال دانے دار.

पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस टपाल दानेदार। हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस टपाल दानेदार।

0: from the house of 6B Food Industries.
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार। हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार। पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस कपाल दानेदार।

0: राइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 11:10 और आज है जी 13 अगस्त 2026। कैसे ना FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट सराफे विद आरजे डॉक्स, और मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है आज मोहसिन एंड रहमान एंड उमर एंड अबू बकर, और हम बात कर रहे हैं आज कुछ भी नहीं, हम सिर्फ जश्न आजादी में नहा रहे हैं, हम बेहंगम से गुफ्तगू कर रहे हैं। फलसफे में वैसे हमने ये पढ़ा था कि बेतरतीबी भी एक तरतीब होती है,
1: बिल्कुल ऐसे ही।
0: मैं उस पर बड़ा यकीन रखता हूँ कि बेतरतीबी होनी चाहिए, वो एक तरतीब है, देखने वाली नजर हो ना तो तरतीब नजर आ जाती है, जिस तरह से वो हुस्न देखने वाले की आंख में होता है।
1: बिल्कुल।
0: और मैं अक्सर हैरान होता हूँ कि बाकी देखने वालों की आंख में होता है, जड़े कहते आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, फिर मैं हैरान होना पता नहीं ताड़ी अखाँ खराब नहीं ठीक है ना, फिर मैं कहता नहीं लाइट और कैमरा में बंदा अच्छा ही लगता है, हूँ तो इतने फिल्टर नहीं है, यूट्यूब तो नहीं तो मैं फिल्टर ला के आता फिर तानू होर अच्छा लगता, उसमें कभी बाल लगा लेता, आज मैं ग्रीन कलर के बाल लगाता फिल्टर में जरूर, बड़ा मजा आता।
2: सर इंस्टा पे भी लाइव आप ट्राई करें, इंस्टा पे फिल्टर्स अलाउ हैं।
0: अच्छा नहीं मैं टिकटॉक पे जाऊंगा या यूट्यूब लाइव पे, हाँ
3: लोग आपके शो रिकॉर्ड करके रखते हैं अपने पास और बाद में सुनते हैं, तो फैन पोलिंग तो है आपकी, ये बात तो माननी पड़ेगी,
0: उनकी मेहरबानी है जी। जैन बाबा हैं जिन्होंने जश्न आज़ादी मुबारक कहा और अल्लाह हाफिज़ कह दिया, आपके अंदर की औरत जाग जाती है जैन बाबा जी, मैंने हिसाब लगाया, मेरा मैसेज नहीं पढ़ा, मैं जा रही हूँ, तुमने मुझे देर से रिप्लाई दिया, मैं जा रही हूँ,
1: अल्लाह हाफिज़
0: अब मेरे से बात ना करना
3: अब मुझे आपका मैसेज ना आया,
0: हाँ मुझे आपका मैसेज ना
2: आया,
0: दो घंटे बाद फिर आ जाता है, आपका मैसेज वाकई नहीं आया शर्म नहीं आती
1: आप माइंड कर गए माइंड नहीं करके आप तो सीरियस ही हो गए
3: सर, ये होता है कि तुम तो चाहते ही हो मैं बात ना करूं
2: एक्सपर्ट
0: अच्छा जी साथ मैसेजेस पढ़ के कॉल्स भी लिए जाते हैं जी, बाकी कल बहुत दुख हुआ मुझे, और यार बस करो कल गाना दोबारा चलाया है, मैं ना दुख किया करो, देखा मैंने कहा ना अगला मैसेज आ गया ना रोना लगा तुम्हारा गाना चलाया मैंने एंड पे,
1: अच्छी आज रात है जश्न आजादी की रात है, नहीं इनको दुख अभी भी लगे,
0: आज कल चलाया भी है मैंने, एवं रुसिया रहता है। शाहजेब शाजमू है, सलाम किया, वालेकुम सलाम, और मैडम सलमा ने कहा थैंक यू बॉयज, आप सबका शुक्रिया अदा किया,
1: थैंक यू मैडम।
0: और तुबा बेग कहती है अकलियतों से मुतालिक झंडे के सफेद रंग की सही वजाहत आज सुनने को मिली, बिल्कुल ऐसे जी डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा डिफाइन किया, थैंक यू वेरी मच, आपका भी और डॉक्टर साहब का भी। एंड अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, रजा आलम आए तमाम अहले पाकिस्तान को दिल की अथाह गहराइयों से जश्न आज़ादी मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद। और मैडम आपने बिल्कुल बजा फरमाया, इनसे पूछें कि इन लोगों ने पाकिस्तान को क्या दिया,
1: बिल्कुल ठीक,
0: मौज बड़े या आंधी आए दिया जलाए, रखना है घर की खातिर सो दुख झेलें घर तो आखिर अपना है,
1: क्या बात है, खूबसूरत बात, ये बहुत अच्छा आंसर है
0: ना। सोहेल अब्बास ने सलाम किया, जश्न आज़ादी मुबारक कहा, बहुत शुक्रिया जी, गुलाम मुश्तबा शाह साहब हैं, एक्सलेंट शो, बहुत शुक्रिया। एंड इसके अलावा सलमान चांडिया साहब हैं जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और आप सबको भी सलाम दिया उन्होंने, गुलाम है उन्होंने भी सलाम किया, माजबीन है सलाम किया, उन्होंने कहा आपको तमाम आपके साथ याद है इसको सलाम,
1: वालेकुम
0: सलाम, जश्न आज़ादी मुबारक। गोना टेक अनदर कॉल जी, हेलो, अच्छा कॉल ड्रॉप हो गई, 1 2 3 हियर वी गो, हेलो
3: अस्सलाम वालेकुम,
4: वालेकुम सलाम, कैसे हैं
3: आप? अच्छी अल्लाह का शुक्र, सर आप बताएं आप कैसे हैं, किधर से और कहां से बात कर रहे हैं?
4: मैं हाफिज मोहम्मद तौसीफ बात कर रहा हूं, कनाडा से।
3: कनाडा से बात कर रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर आप 14 अगस्त के मतलब आपकी क्या फीलिंग्स हैं, चंद मिनटों बाद जो है पाकिस्तान जो है वो 79 ईयर्स का हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे इस मौके पर?
4: अल्लाह पाक हमेशा जो है वो पाकिस्तान को कायम और दायम रखे,
3: आमीन आमीन,
4: हमेशा हम जहाँ मर्जी रहे पाकिस्तान हमारे साथ रहता है, हमारे दिल में रहता है।
3: बिल्कुल ऐसे सर, आप एक पैगाम दे दें, अगर आप सामान को पैगाम दें कि आप आउट ऑफ कंट्री हैं, पाकिस्तान में नहीं है।
4: जी जी, मैं पैगाम देना चाहता हूँ, उसमें थोड़ा सा आपका टाइम मुझे रिक्वायर्ड होगा।
3: जी जी जरूर।
4: सर मैं थोड़ा सा डिफरेंट नजरिए से सोचता हूँ, शायद मैं गलत भी हूँ, कुछ लोगों को ठीक भी लगता हूँ।
0: अच्छा अच्छा, आपने पैगाम देना
4: मैं अच्छा ही दूंगा, अच्छा हाँ, ही दूंगा। और
0: फिर आप डिफरेंट बात करें, जो मर्जी करें, वो कोई मसला नहीं है। देखें, आप जिस तरह का भी पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, हम बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करते हैं, सुनते हैं। बस मुद्दा ये होता है यार, एंटी पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। बाकी आप बिल्कुल, आपका गिला शिकवा या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है,
4: कोई भी एंटी पाकिस्तान नहीं रहता।
0: ये बात
3: ये बहुत अच्छी बात की आपने।
4: आपको किसी इंडिविजुअल से मसला हो सकता है, किसी एक इदारे से मसला हो सकता है, किसी एक कंपनी से मसला हो सकता है, आपको होल कंट्री से मसला नहीं हो सकता, क्योंकि आप वहाँ के सिटीजन है, वहाँ के नेशनल है, और वहाँ वो आपके कह लेंगे जाए पैदाइश है।
0: जी जी जी।
4: तो इस लिहाज से मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव लोगों का चेंज करना चाहता हूँ।
0: जी।
4: कि आपने अभी बात की कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया, मैं बाकी ये सबसे पूछना चाहता हूँ कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया। आप कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर रहा, पाकिस्तान जो है वो पीछे जाता जा रहा है, आगे नहीं जा रहा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को जिस तरह से सिखाते हैं, लाइक मैं अपने इर्द गिर्द जो मेरे फैमिली रिलेटिव हैं, मैं उनको भी ये बात करता हूँ कि आप बच्चों को कहते हो कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, यानी कि वो अगर कोई मिट्टी पे खेल रहा है, हम उसे कहते हैं कि गंदे काम कर रहे हो, या वो बाहर वो जो सफाई करने वाला आता है, हम उसे कहते हैं चूड़ा आया, या
0: इस तरह का
4: वर्ड यूज करते हैं।
0: वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड।
4: कहता हूँ कि चूड़े आप हो जो गंद डालते हो, उसको सफाई करते हैं।
5: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की सर आपने।
4: ठीक है, फिर मैं कहता हूँ कि आप बच्चे कुछ भी सीखना चाहे ना, लाइक मैं कहता हूँ कि मेरा बच्चा मोटरसाइकिल मैकेनिक बने
0: जी,
4: तो लोग बड़ा हैरान होते हैं कि यार ये भी काम है करने वाला।
0: बिल्कुल ठीक है जी।
4: मैं कहता हूँ कि वो स्किल है, आप अपने बच्चे को 25 साल तक अपने वो आगोश में छुपा के रखते हैं, बाद में उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दुनिया को फतह करे या वो पाकिस्तान का नाम रोशन करे, किस तरह करे वो?
5: बिल्कुल ठीक।
4: उसको वो चंद किताबों के, उसको कुछ नहीं आता, वो भी उससे रटी होती है।
0: बिल्कुल,
4: आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में तो निकालें, कोशिश तो करें उसके साथ।
0: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात।
4: अब छोटे छोटे स्किल, यहाँ पे जो मैकेनिक है उसको मैकेनिक नहीं कहते, यहाँ पे कहते हैं स्किल्ड वर्कर है।
5: क्या बात है,
0: बिल्कुल ठीक।
4: कोई भी छोटा काम करने वाला ना, किसी भी फील्ड में है, उसको वो कहते हैं कि स्किल्ड वर्कर है,
2: रिस्पेक्ट करते हैं।
5: नो डाउट, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता। बिल्कुल आपकी बात ठीक है।
4: तो मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान तरक्की करे, अल्लाह पाक पाकिस्तानियों को समझ बूझ दे, पाकिस्तान को अल्लाह पाक ऐसे लोग अदा करे जो कोई भी, मैं किसी एक को मेंशन नहीं करता, लेकिन ऐसे लोग अदा करे जो वाकई हकीकत में पाकिस्तान को तरक्की की राह से गामजन करे।
0: आमीन सर, थैंक यू वेरी मच, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉल इट वाज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
5: इनकी आवाज में वो चीज महसूस हो रही थी,
0: है ना?
5: जो बंदा मुल्क से बाहर है उसको आजादी का पता है,
0: he knows
5: the price of this independence.
0: Exactly.
6: सर, आजादी की कदर उनको पता है जिनके पास आजाद मुल्क नहीं है।
2: ऐसे ही है, और ये बेसिकली वो बाहर है ना, तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया ना, उधर
6: एक्सपीरियंस किया है उनके अंदर की, वो जानते हैं,
2: वो जानते हैं कि मुल्क से दूर रहना कैसा लगता है।
5: मिलो दूर रहे हम हमसे, लेकिन मुझे वो चीज महसूस हुई इधर बैठे।
0: बिल्कुल ऐसे ही है जी। राबिया शफक ने सलाम किया, वालेकुम सलाम। और इसके अलावा 4471 पे मैसेजेस आए हैं जी हमें, और आबिद अली मर्दान से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया बादल, आपको और तमाम आरजेस को सलाम, वालेकुम
5: सलाम।
0: महात्मा हमें सुन रही हैं, सलाम किया, कैसे हैं, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। सर जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको, आपको भी मुबारक हो। सना राजपूत, अच्छा मैं कोई नहीं आपके साथ मानी, आप बड़े शरारती हो, मैनू क्यों कल्ले मनाना है मैंने कोई गल नहीं समझ आई अच्छा ठीक है, होएगी कोई गल दाड़ी। वो कहते हैं गूंगे दी रमजा गूंगे नु समझ आंदी ने। आप गीन है, आप सबको पाकिस्तान का 79th यौम आज़ादी मुबारक, बहुत सी दुआएं साथ, बहुत सी दुआओं के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। महमूद है इस्लामाबाद से, पापा सही है, ये भी अच्छा है यार, आई लाइक इट जी, आई लाइक इट, लव यू पाकिस्तान बट हेट यू। अच्छा ठीक है और फिर कहा वैसे आप हंसते हुए जरा अच्छे लगते हो, एक ही गाल
6: अच्छे
0: एक ही गाल
1: थोड़े देख ले भी आप, ये तो बात है ना फिर जो दिखते हैं
0: आपको। फिर आगे लिखा 55 साल के अंकल जी, ओ, क्या बात है, आपको कैसे पता चल गया, ये भी आपने ठीक कहा।
6: ऐसे लोग होते हैं जो आपको वालिद का रोल देना चाह रहे थे।
1: नहीं बिल्कुल, आरजे डॉक्स ड्रामे में भी कर सकते हैं और बड़े टैलेंटेड हैं। कवर कर ले बात,
0: ठीक है,
3: यही बात हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कि सबके रोल ऑफ हुआ था पापा का।
6: हाँ ये हम लाइव शो में किसी ने
1: नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है ये।
0: अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके ओके। नहीं आपने 55 थोड़ी बताई, 5-6 साल ज्यादा कर,
6: ज्यादा कर
0: प्लीज, 59 तक लेके जाएं, कुछ साल एक रखें रिटायरमेंट में। और इसके बाद जाफर हैं फ्रॉम एबटाबाद, 14 अगस्त मुबारक, बहुत शुक्रिया जी। एम रिजवान उल हक हैं लाहौर से, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, आई लव पाकिस्तान। रिजवान सदीक फ्रॉम भेरा, पाकिस्तान जिंदाबाद, और सबको सलाम। और परवीन आपा और मिसेस सईद को भी आपने सलाम दिया, बहुत शुक्रिया जी। और तमाम आर्जेस को आपने लव यू बोला जी, ओके लव यू टू। सलाम है मोहब्बत चंदा, कैसे हैं आप, खुश रहें, आपकी दीवानी है, ओके थैंक यू वेरी मच जी। पाकिस्तान 61 मर्दान में, ओके आपका मैसेज मिल गया मुझे, आप सजेशन अच्छी भेजते हैं जी, बहुत शुक्रिया जी। अब्दुल्लूर हाशमी साहब रिवाज गार्डन से, आदाब तस्लीम जी। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी बवाल ना हो, बहुत अच्छा। और जो आगे आपने मैसेज भेजा है बी, ठीक है मिल गया, बी बी यू नो अंग्रेजी वाला, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और इंसान दुनिया के किसी भी कोने में हो ना, याद रखें आपने अपने लिए एफर्ट खुद करनी होती है,
6: बेशक।
0: और खालिक कायनात ने बड़ा वाज़े कहा है कि वो उस फर्द वाहिद सोसाइटी इलाके या जो जमा है लोगों की इज्तमा है उसकी हालत तब तक नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपने लिए एफर्ट नहीं करते। और ये कानून फितरत है जो तय हो चुका, अगर आप नहीं करते तो दिस इज़ योर फॉल्ट, आप किसी को इल्जाम नहीं दे सकते। सना राजपूत हैं, अच्छा मैं अकेले में आज़ादी मनाऊंगी, ओके बिल्कुल ठीक है, अकेले में आज़ादी मनाए, अच्छी बात है। राबिया हैं जी, राबिया शफक कहती है पाकिस्तान का मतलब क्या, और ये बाहर रहने वालों को ही पता चल सकता है, दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। क्या बात है जी, आप हमें कॉल कर सकते हैं 04221100101, और आप बात कर सकते हैं कोई भी आज के हवाले से, कोई मैसेज देना चाहे जवानों को कोई, या जो आजकल जो तूफान बदतमीजी भी हो रहा होता है उसके हवाले से कुछ गाइड करना चाहें, अपनी मेमोरी शेयर करना चाहें, कुछ भी एनीथिंग, आप कॉल करें 04221100101 एंड वी आर हियर, वी गोना टेक योर कॉल। हेलो,
7: अस्सलाम वालेकुम
8: जी,
7: कौन कहां से बात कर रहे हैं?
8: हिमा खान कराची से बात कर रहा
7: हूं जी। हिमा कैसी हैं आप?
8: जी मैं ठीक हूं जी। मैंने सर को बहुत दिनों बाद कॉल किया, दूसरी बार है जो मैंने सबको कॉल किया।
7: जी जी सर, आपको सुन रहे हैं हम
8: जी, और आप सबको सलाम, और जी जो बेटे सब,
7: वालेकुम अस्सलाम जी। मैम जश्न आज़ादी का जिक्र हो रहा है तो कोई पाकिस्तान के लिए कोई पैगाम आप देना चाहें?
8: मैं यही कहना चाहूंगी कि सब बस नेक साफ रखे और इत्तेफाक एक हो जाए, सब एक हो जाए, अपने पाकिस्तान से प्यार करें, अपने पाकिस्तान को साफ रखें और खुश रखें, सब खुश रहें।
7: बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत बात की आपने कि हम एक हैं और हमें एक ही रहना चाहिए,
1: इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम
7: बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है।
8: बेशक, और सर से मैं ये कहना चाहूंगी, सर मैंने आपको कहा था कि मैं ब्लाइंड हूँ, और दूसरी बात सर, जब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपने जब किसको चाहते हो या किससे प्यार करते हो, मतलब जो भी हो, दोस्त हो, बहन हो, भाई हो, या जो भी हो, जो इंसान भी और जो या कोई भी, तो वो आपसे दूर क्यों हो जाते हैं? मैं जिसको भी चुनती हूँ ना, वो मुझसे दूर हो जाते हैं, ये क्यों ऐसे होते हैं मेरे साथ?
7: ये तो अल्लाह को जो मंजूर, अल्लाह पाक की ज़ात, जो अल्लाह पाक की ज़ात को मंजूर है, इसमें इंसान कुछ कर नहीं सकता,
5: इसमें ही इंसान, इसी में बेहतरी है, अल्लाह के हर फैसले में
7: अल्लाह पाक है। ने हर इंसान के लिए जो फैसला किया है कुछ सोच समझ के, मतलब वो ज़ात सबसे ऊपर है, और उसके फैसले के सामने हम चैलेंज नहीं कर सकते।
5: और ये कुरान पाक में भी आप अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बेशक आप वो नहीं जानते जो खुदा जानता है।
7: बेशक बेशक।
5: और आज शायद वो चीज़ आपको दुश्वार लगे, लेकिन कल यही चीज़ होगी कि जिस पे आप फख्र करेंगी कि शुक्र है।
7: बिल्कुल,
8: आज के दिन मेरे लिए दुआ करना सब आप लोग सर, प्लीज
7: इंशाल्लाह।
8: बिल्कुल, मेरी जिंदगी में खुशियाँ आ जाए
5: इस बाबरकत दिन के, 14 अगस्त के दिन आपके लिए दुआ करते हैं इंशाल्लाह।
7: इंशाल्लाह मैम, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां
8: फरमाए। सबके लिए बहुत सलाम, दुआएं आप सबके लिए बहुत सारी।
7: बहुत शुक्रिया,
0: बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारा ख्याल रखे हैं, थैंक यू वेरी मच।
8: अल्लाह
0: हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये एक यूनिवर्सल मसला। ओके ओके, अभी यहाँ पे जी पीएम साहब लाइव हैं, हम जरा आपको लिए चलते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच सुनाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं।
9: जनरल आमिर रजा, वफाकी वज़रा, गवर्नर साहिबान और वज़राए आला, अरकीन पार्लियामेंट, सुफ़राए कराम, मुसल्ला फाज के बहादुर अफसरान, शेर दिल जवानों और मेरी गयूर कौम के बुज़ुर्गों, माओं बहनों, बेटों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। यादगार फतह के साए में पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक हो। मेरे हम वतनों, आज यौम आज़ादी मनाते हुए हम अल्लाह ताला के हजूर सर बसजूद हैं, जिसने अपने बेपाया फजलो करम से हमें आज़ाद वतन से नवाजा। ये वो दिन है जब बाबा कौम हज़रत कायद आज़म की वलवला अंगेज क़ियादत ने कौम को ग़ुलामी के अंधेरों से निजात दिलाकर आज़ादी की रोशनी अता की। ये वो दिन है जिसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने शहादतें पेश की, जानो माल की अजीम कुर्बानियाँ दीं, खून के दरिया अबूर किए, माओं बहनों और बेटियों ने अपने आंचल को आज़ादी का परचम बना दिया, और यूं वतन अजीज पाकिस्तान वजूद में आया। मीनार पाकिस्तान इसी अजीम जदोजहद, अज़्म और कुर्बानियों की जिंदा अलामत है, और यादगार फतह हमारी अजीम कौम के अज़्म व हिम्मत, मसल्ला फाज के जोरे बाजू, उनकी पेशा वराना महारत और दुश्मन के मुकाबले में उनकी बर्तरी की अलामत है। हमारी बहादुर मसल्ला फाज और उसकी दलेर क़ियादत के हमरा इस अजीम शान यादगार फतह का इफ्तिताह करते हुए हमारे दिलों में जज्बात का तूफान उमड़ रहा है और आरजुओं का समंदर ठाठे मार रहा है। जज्बात पाकिस्तान की अजीम शान फतह और इसकी खुशी के, और आरजुएं अपने वतन को मज़ीद खूबसूरत, मुस्ताकम और खुशहाल बनाने के लिए। इस मौका पर मैं पूरी कौम को मारका हक में अजीम शान कामयाबी पर समीम कल्ब से मुबारकबाद और फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर को दिल की अथाह गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसके गरूर को हमेशा के लिए खाक में मिला दिया। इस फैसलकुन मरहले पर उनकी दलेराना और वलवला अंगेज क़ियादत में हमारी मसल्ला फाज ने जिस बहादुरी और जुर्रत के साथ दुश्मन को इबरतनाक شکست دی وہ تاریخ کا ناقابل فروش واقعہ ہے۔ مارکہ حق کی تاریخی فتح میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی شاندار قیادت میں پاک فضائیہ کے شاہین صفت جاں بازوں اور چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی کمان میں سمندروں کے جری نگبانوں کا کردار بھی امر ہو چکا ہے۔ یہاں پر میں اگر یادگار فتح کے منفرد اور بامقصد ڈیزائن اور نفیس طرز تعمیر کا ذکر نہ کروں تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ انتہائی کم وقت میں اور آج یہ بتایا گیا کہ صرف 8 ماہ میں اتنی شاندار یادگار کی تعمیر ممکن نہ ہوتی اگر اس میں فیلڈ مارشل آپ کی گہری دلچسپی نہ ہوتی۔ میں اس حوالے سے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو جنہوں نے اس عظیم تعمیر میں مزدور سے لے کے انجینئر اور ہر فرد نے جو کام کیا وہ سب مبارکباد کے لائق ہیں۔ میرے عظیم ہم وطنوں، یادگار فتح اینٹ گارے سے بننے والی کوئی عمارت نہیں، یہ ان عظیم شہداء کو خراج عقیدت ہے جنہوں نے دفاع وطن کے لیے شہادت کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ان غازیوں کو خراج تحسین ہے جنہوں نے دشمن کے مقابلے میں بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا، اور یہ یادگار اس عظیم قوم کے اتحاد کی علامت ہے جو مشکل ترین وقت میں اپنے افواج کے شانہ بشانہ کھڑی رہی۔ یہ فتح ہماری مسلح افواج کی فتح ہے، پاکستانی عوام کی فتح ہے، اور یہ فتح ہم سب کے ماتھے کا جھومر ہے۔ میرے عزیز اہل وطن، ہم جنگ نہیں امن چاہتے ہیں، لیکن امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہم عزت اور وقار کے ساتھ امن کے لیے کھڑے ہیں، اور الحمدللہ اس خطے میں استحکام کی ضمانت بن چکے ہیں۔ مئی 2025 کے مارکے کا یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچ چکا ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ اس مارکے نے پاکستان کے وقار میں ایسا غیر معمولی اضافہ کیا ہے جس کی اثر حاضر میں مثال نہیں ملتی۔ یہ حقیقت اگر اب بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آئی تو اس کے لیے ہمارا پیغام واضح ہے کہ وہ اپنی عبرتناک شکست کو یاد رکھے، اور اگر آئندہ کسی نے بھول سے بھی پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کو چیلنج کیا تو اسے مئی 2025 سے بھی زیادہ قوت کے ساتھ منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ حاضرین کرام، گزشتہ برس جنگ میں شکست کے بعد بھارت نے سندھ تاس معاہدے کو یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر معطل کر کے خود کو امن کا دشمن ثابت کیا ہے۔ میں واشگاف الفاظ میں اعلان کرتا ہوں کہ پاکستان کے پانی کی ایک ایک بوند ہماری ریڈ لائن ہے۔ بھارت راہ راست پر نہ آیا تو اسے براہ راست جواب دیا جائے گا۔ میرے عظیم ہم وطنوں، یادگار فتح ہمارے اس قومی سفر کا عام سنگ میل ہے جس کی منزل ایک خوشحال، مستحکم اور فلاحی پاکستان ہے۔ ایسا پاکستان جو ترقی یافتہ اقوام کی صفحے اول میں نمایاں دکھائی دے۔ یہ سفر دفاع وطن کا بھی ہے اور تعمیر وطن کا بھی۔ ہم نے معاشی ترقی کے عمل کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آن کرنا ہے، ہم نے نئی نسل کے لیے ترقی کے دروازے کھولنے ہیں، انسانی وسائل کو مزید ترقی دینی ہے تاکہ ارض پاک میں ترقی اور خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز ہو۔ ہمیں ایک ایسا پاکستان بنانا ہے جہاں چاروں صوبوں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بسنے والے پاکستانی مل کر ترقی کی منازل طے کریں۔ میرے قوم کے نوجوانوں، بیٹوں اور بیٹیوں، ایک تبدیلی یہ ہے جو سیاست اور معیشت کے میدانوں میں آ رہی ہے، ایک تبدیلی اور ہے جو آئی ٹی اور اے آئی نے پیدا کی ہے۔ یہ ایک نئی دنیا ہے، اس میں جینے کے طور طریقے بھی نئے ہیں۔ آج کی دنیا میں وہی قوم زندہ رہے گی جو آئی ٹی اور اے آئی کے ساتھ جینے کا ہنر جانتی ہو۔ آپ نے ان تبدیلیوں کے مطابق خود کو ڈھالنا ہے۔ میرا آپ کے لیے پیغام ہے کہ نئی چیزیں ایجاد کریں اور ایک نئی دنیا آباد کریں، اور میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ حکومت حت المقدور تمام مسائل آپ کے قدموں میں نچھاور کرے گی۔ میرے بھائی اور بہنوں، ہم اس خطے اور دنیا کو تنازعات سے پاک دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم تنازعات کو انصاف اور اقوام متحدہ کے اصولوں کے مطابق حل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہے کہ دنیا نئے تنازعات سے محفوظ رہے۔ یہی وہ جذبہ تھا جس کے تحت پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان ذمہ دار ثالث کا کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے اگر ایک طرف معاہدے جنگ میں شجاعت کا مظاہرہ کیا تو دوسری طرف مشرق وسطی میں امن کے لیے تاریخی کردار ادا کیا۔ یہ پاکستان کا اصل تعارف اور پہچان ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اسی جذبے کے تحت پچھلے سال برادر اسلامی ملک سعودی عرب سے ایک دفاعی معاہدہ طے پایا، اور اب ترکیہ بھی مکہ المکرمہ میں طے پائے جانے والے سہ افریقی دفاعی معاہدے کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ مشرق وسطی کے لیے امن کی بشارت ہے، یہ عالم اسلام کے لیے امن کی نوید ہے، اور ساری دنیا کے لیے امن کا پیغام ہے۔ اس تاریخی معاہدے کو حقیقت کا روپ دینے میں جہاں سعودی عرب کے ولی عہد میرے انتہائی پیارے بھائی شہزادہ محمد بن سلمان اور ترکیہ کے صدر میرے انتہائی پیارے بھائی اور دوست رجب طیب اردوان نے پرخلوص کاوشیں کی ہیں، وہاں نائب وزیر اعظم سینیٹر محمد اسحاق ڈار اور بالخصوص فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے جس بالغ نظری، محنت اور لگن سے کام کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ آج کے مبارک موقع پر میں خواتین و حضرات ایک بار پھر اعلان کرتا ہوں کہ ہم مظلوم فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت، مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل اور پائیدار امن کے لیے اپنی اصولی حمایت جاری رکھیں گے۔ مسئلہ کشمیر کے بارے میں ہمارا موقف دو ٹوک ہے۔ ہم کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھیں گے، ان کی قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، اور بھارتی جبر کے پنجے سے آزادی کے لیے ان کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھیں گے جب تک کشمیری بھائیوں اور بہنوں کا ان کو بنیادی حق ان کو مل نہیں جاتا۔ مہمانان گرامی، ہم افغانستان میں بھی امن اور استحکام چاہتے ہیں، لیکن افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ناقابل برداشت ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں اور ہمیشہ اسی طرح ہمیں رہنا ہے۔ میرا افغان قیادت کو مخلصانہ مشورہ ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کی پناہ گاہ بننے سے فی الفور روکیں۔ خواتین و حضرات، میں اس تاریخی موقع پر اپنے عظیم دوست چین اور اس کے صدر جناب شی جن پنگ کی لازوال دوستی اور مخلصانہ تعاون کا ذکر انتہائی ضروری سمجھتا ہوں۔ چین اور پاکستان کی دوستی ہمالیہ سے بلند ہے۔ یہ عظیم دوست ملک آزمائش کی ہر گھڑی میں پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہا ہے۔ مزید برآں، ہمارے انتہائی دوست اور برادر ملک سعودی عرب، ترکیے، قطر، کویت، آذربائیجان، ایران اور دیگر برادر اسلامی اور دوست ممالک کی ہمارے دل میں بے پناہ قدر ہے۔ انشاءاللہ یہ تعلقات مزید پھلتے پھولتے رہیں گے۔ یہاں پر میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے گزشتہ برس پاکستان اور بھارت درمیان بر وقت جنگ بندی کروا کر لاکھوں معصوم جانوں کو ہلاکت خیزی سے بچانے کے لیے انتہائی مؤثر اور تاریخی کردار ادا کیا. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مسلسل فروغ پا رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ مستقبل میں یہ مزید مضبوط اور توانا ہوں گے. میرے عزیز اہل وطن، آج ہمیں ایک اور عہد بھی کرنا ہے. جنگ کے دنوں میں پاکستان نے ثابت کیا کہ جب قوم متحد ہو تو کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی. اب ہمیں امن اور ترقی کے دنوں میں بھی یہی اتحاد برقرار رکھنا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپس میں اختلافات بھلا کر نفرتوں کو دفن کریں اور محبتوں کو زندہ کریں. پاکستان سب کا ہے، ہم سب اس کے وارث ہیں اور ذمہ دار بھی. اختلاف رائے بنیادی حق ہے، لیکن اختلاف کو دشمنی میں تبدیل کر دیا جائے تو قومی طاقت کمزوری میں بدل جاتی ہے. اس موقع کے لیے اقبال نے خوب کہا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. میں آخر میں ان یادگار لمحات میں گزارش کروں گا کہ ہم عہد کریں کہ ہم سب پاکستانی اپنے فرائض محنت خلوص لگن اور ایمانداری سے انجام دیں گے. یادگار فتح کے بظاہر ساکت نظر آنے والے ستون قوم کے جذبہ تعمیر کی ترجمانی کر رہے ہیں. یہ جذبہ تعمیر میں آپ کے پرعزم چہروں پر بھی دیکھ رہا ہوں، جو ایک شاندار مستقبل کی نوید ہے. مجھے اس آزاد وطن کی فضاؤں میں حضرت اقبال کی امید بھری آواز سنائی دے رہی ہے. آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.

0: पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस टपाल दानेदार। हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस टपाल दानेदार। हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस टपाल दानेदार। हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस टपाल दानेदार। हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस टपाल दानेदार। हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार। चाय बने बस टपाल दानेदार।
1: ऑल राइट जी, वेलकम बैक। और हम आपको ले गए थे जो इस वक्त तकरीब जारी है इस्लामाबाद में, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का खिताब था। और उसके लिए तो अभी हम वापस आ चुके हैं। वक्त हो चुका है 11:44 और 13 अगस्त है 2026 का सिंध है। मैं हूँ आरजे डॉक्स, प्रोग्राम है नाइट थेरापी, जिसमें हम आज महज पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, दो कॉल्स आई बड़ी ज़बरदस्त। एक तो वो डॉक्टर साहब थे जिन्होंने फ़ोन किया, और इसके अलावा एक और साहब थे जिन्होंने बात की, पाकिस्तान के बाहर से कॉल की। वो भी बहुत अच्छा उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, एंड आई लव्ड इट। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक जी। गोना टेक योर कॉल्स और आगे बढ़ेंगे। फिर हम नासर का, यहाँ पे यार नासर का एक सॉन्ग भी शामिल करेंगे
2: जी। प्लीज़,
1: कौन सा वाला गाना है, क्या है उसके लिए?
2: सर ये गाना है मार्के हक की बुनियाद पर बना है।
1: अच्छा।
2: और जो जंग हुई थी 1 साल पहले,
1: ओके,
2: उसके लिए ट्रिब्यूट मैंने प्रिपेयर।
1: ज़बरदस्त ज़बरदस्त। कल पे मोमिन ने सलाम कहा है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान का मतलब क्या है, बिल्कुल राबिया शफ़क आपका मैसेज हमने पढ़ लिया। सोहेल अब्बास कहते हैं आज मैंने बाजा बजा दिया है। अच्छा ठीक है, अगला मैं मैसेज नहीं पढ़ लिया तेरा, बट ठीक है।
3: इंटरेस्टिंग मैसेज है वैसे।
4: इसका मतलब ये है कि आपका फेवरेट है वो मैसेज।
3: नहीं मैंने तो वो लाइव पे मैंने देख लिया।
1: अच्छा एक कॉल लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
3: जी अस्सलाम वालेकुम।
5: अस्सलाम वालेकुम
3: जी। वालेकुम सलाम सर, कौन और कहां से?
5: सर मैं तारिक बात कर रहा हूं, कृष्ण नगर लाहौर से।
1: क्या हाल है तारिक भाई?
5: जी अल्हम्दुलिल्लाह। आजी डॉक्टर साहब असद भाई
1: जी, जी
5: मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान हमें बड़ी मुश्किलें से मिला है,
3: बेशक
5: कायदे आजम के और अल्लामा इकबाल जितने भी अंतक कोशिश के बाद ये मिला। तो हमें ये चाहिए कि पाकिस्तान की जितनी हो सकता है ना हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो सेकंडली जो न्यू जनरेशन बाहर जाती है ना, उन्हें कम से कम पता चलना चाहिए कि हमारा जो पाकिस्तान है ना
3: जी, जी।
5: की वजह से हमारी जो हमारी है ना पहचान वो पाकिस्तानी है। और जो न्यू जनरेशन को चाहिए कि वापस आए अपने पाकिस्तान में, कम से कम वापस मुस्तकिल नहीं आना चाहते तो कुछ ना कुछ तो उसमें कुछ करना चाहिए ना पाकिस्तान के लिए।
3: बिल्कुल ठीक बात की आपने सर,
1: बिल्कुल सही। और तारिक भाई कुछ और कहना चाहेंगे?
5: बस यही है, जो लोग जाते हैं वापस नहीं आते, उनसे ये गिला,
1: जाने वाले वापस नहीं आते
5: जी। पाकिस्तान हमेशा जिंदा रहे, फाइंदा रहे,
3: इंशाल्लाह बढ़ता जिंदा रहेगा पाकिस्तान,
5: बिल्कुल बढ़ता फूलता रहे।
1: थैंक यू वेरी मच,
3: थैंक यू सो मच तारिक साहब,
1: थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। रिजवान सदीक साहब कहते हैं सर लव यू सिर्फ आपको बोला था मैंने। अच्छा ठीक है। सुभानुल हक लाहौर से कह रहे हैं आई लव माय पाकिस्तान। सना राजपूत कहती हैं सब लिसनर को एक बात बोलना चाहूंगी, अपनी खुशियों में उनको भी याद रखें, वो भी आपकी खुशियों के हकदार हैं जिनका दुनिया में कोई नहीं। और कहती हैं मैं अकेली इसलिए मनाऊंगी क्योंकि आपने शुरू में कहा था हम आपके साथ मनाएंगे, मैंने आपके साथ जश्न आज़ादी नहीं मनाना। ठीक है, वो कहने मेरी कॉल नहीं मिलती यार, कॉल मैं तो नहीं अब पकड़ के मिलवा सकता मैं।
3: बिल्कुल।
1: और मेहर फातिमा सर, नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज में एक मिली नगमा नहीं, अभी हम चलाएंगे यार नासिर की
3: आवाज में।
1: और 13 मिनट बाकी हैं, 14 अगस्त का आगाज होने वाला है। अभी यहाँ पे एक कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
6: अस्सलाम
5: अफसर साहब आपको, आपके साथियों को और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और
1: वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत
5: शुक्रिया। मैं मोहम्मद सलमान सलमानबाद लाहौर से बोल रहा हूँ।
1: कैसे हैं भट्ट साहब, आप खैरियत से?
5: अल्लाह का शुक्र, मैं तो सुबह का इसलिए खुश हूँ कि मैंने सुबह नमाज के बाद, अल्लाह का शुक्र है कि बानी पाकिस्तान कायद मोहम्मद जिना और उनके साथियों के लिए और जो उस वक्त हिजरत के वक्त शहीद हुए थे उन सब के लिए दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की और उन्हें साले सवाब किया, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और अल्लाह करे हम भी अपने मुल्क के लिए जानो माल की कुर्बानी देने से ब्रेक ना करें, तो ऐसा मौका है। और कल मेरी बेगम की भी बर्थडे है, उनका शनाख्ती कार्ड में लेके सुबह का जेब में फिर रहा हूँ, उस पर 14 अगस्त लिखा हुआ है, 14 अगस्त।
1: अच्छा, कल दो चला
5: कल दो केक आने हैं, दो केक, एक उनका एक पाकिस्तान की आजादी का, डबल केक।
1: डबल केक आएंगे आपकी कैद का, पाकिस्तान की आजादी का?
5: नहीं नहीं, मेरी कैद नहीं, मैं उस दिन तो उसके बाद तो मैंने सीखा सारा कुछ।
1: अच्छा,
5: मैं 17 साल की उम्र में शादी हो गई, उसके बाद बीए किया था, और वो बुद्धू ही था पहले, बुद्धू।
1: अच्छा,
5: बाद में सारी समझ आई है।
1: माशाल्लाह, आपके बच्चे तो अब काफी बड़े होंगे ना?
5: मेरा बच्चा, मेरी बच्ची एमफिल कर रही है, एमफिल कर रही
1: है। माशाल्लाह माशाल्लाह,
5: एमए इंग्लिश कर रही है।
1: और आपकी उम्र कितनी है?
5: मेरी तो काफी हो गई है, मेरा मेरी तो
3: 200 साल हो गई है। नहीं, 250 होगी मेरा ख्याल, 200 साल होगी।
1: कितनी होगी?
5: मैंने तो 87 में बीए कर लिया था।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब मैं जो जमे हां तुसी बीए कर लिया?
5: हां जी। और नहीं, मेरा बल्कि मैं पढ़ने जाता था, एक बेटा था मेरा, साल में पढ़ने जाता रहा एक बेटा।
3: शादी के बेटे के बाहर पढ़ने जाते,
1: दोनों बाप बेटा इकट्ठे तो नहीं
3: जाते थे?
5: नहीं नहीं, मैं मेरे अब्बा ने कहा, मेरे अब्बा कहते थे मैंने तेरी देख ले शादी, लोग पहले कमाइयां करते हैं फिर शादी करते हैं, तू पढ़ने जाना है। एक बच्चे का प्यो बन गया थे, फोर्थ ईयर में पढ़ने जाते हैं अब। फिर मैंने वो स्टेट इकोनॉमिक्स और वो इसमें वो बी ए किया उस वक्त।
1: मेरी वालदा जो है, मैं जब स्कूल में था तब उन्होंने एम फिल किया।
5: मैंने अपनी बेगमों को, मेरी बड़ी बेटी ने
3: बेटियों को
5: अब मेरी बात सुने,
3: मुझे भी बेगम लगा।
5: मेरी बेटी ने जब मैट्रिक के पेपर दिए, मेरी बीवी ने उसके साथ दिए मैट्रिक के पेपर।
1: अच्छा,
5: बेटी के साथ।
1: हाँ जी, अच्छा, क्या बात है।
5: पढ़ने का शौक है बड़ा, पढ़ाई।
1: चले जबरदस्त हो गया भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल।
5: मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी,
1: थैंक यू जी,
5: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। क्या बात है यार, बड़ा अच्छा लगता है जी, बहुत अच्छी बातें करते हैं। ताहिर मसूद साहिबा, कोई शिकवा हो, शिकायत हो, मगर अपना है, आगे की सी बला। अच्छा, मोहम्मद अली ज़िया है, उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस किए हैं, और आज मैंने क्लासिक मिली नगमे लगाए थे। क्या बात है आपकी, छा गए आप, छा गए ज़बरदस्त। खुद कलामी में रातें गुजर जाएंगी, हफ्ता गुजरेगा, उम्रें गुजर जाएंगी।
3: वाह,
1: एक ख़त में लिखूँगा बनाम खुदा, पहली सत्रों में आहें गुजर जाएंगी, उसकी यादें नहीं आएंगी, इस तरफ घर के बाहर से राहें गुजर जाएंगी, पत्थरों की तरह वो रहेगा खामोश, सारी की सारी बातें गुजर जाएंगी। लोग कहते रहेंगे गजल दर गजल तेरी आंखों पे, गजलें गुजर जाएंगी, हम खिलौनों से मुंह मोड़ लेंगे, उधर फेरी वाले की नींदें गुजर जाएंगी।
3: वाह वाह,
1: अच्छा है, बहुत अच्छा है फरा, आप गम मना रही हैं। क्या चक्कर है,
3: सारी दुनिया साथी मना रही
1: है वो गम।
5: हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर।
1: वालेकुम सलाम, आज सारे बंदे ने कॉल कर लिया।
5: सर आज तुसी सारे स्टार इकट्ठे हुए सर, इसके लिए दिल कीता सर।
1: क्या बात है, कौन है हमारे साथ?
5: बुद्धि जट सर गल कर रहे हैं सर।
1: ये जनाब जट साहब।
5: हाँ जी सर, माशाल्लाह सोनिया गल, पाकिस्तान सर हमेशा ही जिंदाबाद है सर।
3: पाकिस्तान जिंदाबाद
5: सर, तुहानू सारयां नू सर, पूरी टीम सर, जश्न-ए-आजादी मुबारक। तमाम सर ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨੀਲਾ ਆਪੀ ਆਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਸਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਸਰ ਤੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੌਂਗ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਟ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਪਾਕ ਫੌਜ ਪਾਂਡਾਬਾਦ
1: ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ अच्छा जी मैसेजेस कुछ शामिल कर लेते हैं इस्लामाबाद वाली पोस्ट पे हमें सायम तबस्सुम है अस्सलाम वालेकुम जनाब क्या हाल है ठीक भाई जान आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है यकीन करो बहुत ही अच्छे अंदाज में प्रोग्राम पेश कर रहे हो अल्लाह पाक आपसे राजी हो हमेशा थैंक यू वेरी मच जी बहुत शुक्रिया और पूरी टीम को जश्न आज़ादी मुबारक कहा और साग सुनने वालों ये कुछ समझ नहीं मुझे लगा खाने वाले साग की बात सॉन्ग अच्छा ठीक है सुनाने वालों को अच्छा ठीक है जी अमरीन लाला है जिंदा दिलाने लाहौर और खास तौर पर नए आरजे इसको जश्न आज़ादी मुबारक सलाम किया उन्होंने
6: वालेकुम सलाम
1: अदन फातिमा है सलाम किया उन्होंने तमाम आरजे इसको नौशीन राशिद है जश्न आज़ादी मुबारक किया और सलाम किया और अमरीन लाला कह रही हैं आरजे उमर क्या बात है आप सिक्का बनवाएंगे अपना माज अली माज अली ने मैसेज किया सलाम किया और बहुत पसंद कर रहे हैं आप प्रोग्राम को पेशावर से सुन रहे हैं थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग और लाहौर वाली पोस्ट के मैसेजेस को भी शामिल करते हैं फिर हम बढ़ेंगे ट्रैक की तरफ जो कि ए आर नासिर का अपना गाया हुआ गाना है अच्छा जी हर दुआ में मैं पुकारूं अपने रब रहमान को हर बला से तू बचा ले मेरे पाकिस्तान को भाईचारा कब रहा और कब अख़ुवत ही रही भूल बैठे हैं हम कायद आजम के फरमान को नहीं कमी कुताही होती रहती है यार ठीक है बाकी इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहना चाहिए बातें तो आपकी ठीक हैं हम भूल जाते हैं अक्सर सेल्फिश हो जाते हैं चीज़ों में कहां से कहां निकल जाते हैं और हमें चाहिए कि हम बिल्कुल फरमाने कायदे आजम हैं उनको याद रखें अपने बड़ों की नसीहतों पर चलें और वो अमल करते रहें जिससे हम एक दूसरे के काम आए और अल्लाह के रसूल ने भी यही फरमाया तुम में से बेहतर वो है जिसकी ज़ात से दूसरों को नफ़ा पहुँचे
7: नफ़ा पहुँचे
1: Exactly. तो बिल्कुल आपने अच्छा अच्छा कहा और अल्लाह हम सबको तौफीक दे जी
7: आमीन
1: कवल नाज हैं जो सुन रही हैं हमें पंजाब यूनिवर्सिटी से और सारों को उन्होंने सलाम दिया थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला है यौम आज़ादी मुबारक यार वक्त पर आया करें क्योंकि हम आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं अगर आप वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे तो लोग क्या सीखेंगे ऐसे चलेगा तो कैसे चलेगा पाकिस्तान अच्छा यार ठीक बात की है भाई ठीक है गलती है और रियाज भट्टी साहब ने बार बार लव यू पाकिस्तान लिख के भेजा है ओके लव यू टू फ्रॉम पाकिस्तान मैं ही कह देता हूँ आपको अभी यहाँ पे गाना लगाते हैं आपका शहीद सफदर सुलहरी कैसे हैं सर आई एम फाइन आप बताओ आप कैसे हो आप ठीक हो और चलाए जी आपके ट्रैक फिर
6: जी सर
1: शुरू करें क्योंकि 5 मिनट बाकी हैं जश्न आज़ादी को शुरू होने में और हुमैरा फयाज पाकिस्तान जिंदाबाद जी पाकिस्तान जिंदाबाद यहाँ पे गाना लगाते हैं और फिर वापस आते हैं हरी गो हमारे साथ ही बैठा है सिंगर क्या बात है रहमान लेट्स एंजॉय द नंबर मजा आ रहा है सुनकर बिल्कुल आ रहा है हरी गो

0: बहुत मजा आया यार, जबरदस्त नासर ए आर नासर, क्या बात है यार, मजेदार मजेदार, बहुत अच्छा गाया आपने। और क्या अभी 12 बजने लगे, 1 2 3 हियर वी गो। पाकिस्तान जिंदाबाद, आजादी मुबारक तमाम पाकिस्तानियों को, हम सब की तरफ से बहुत बहुत आजादी मुबारक हो। कोई बोले रौला पाओ, आजादी है।
1: क्या बात है,
2: पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद,
1: हम सब की पहचान है ये, और इस
2: हम सब की जान है ये,
1: इस परचम के साए तले हम
2: एक, एक हैं,
0: इस परचम के साए तले हम एक हैं।
1: सर आप भी मेरे ख्याल आज थोड़ा सा गुनगुना देंगे
0: क्या,
1: तो यही कोई भी मिली नगमा या ये मिली नगमा हो जाए।
0: नहीं मैं मेरा दिल कह रहा है कुछ, जुनैद जमशेद साहब का
2: जिंदा लगा रहे हैं, दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान
1: जिंदा करें,
0: है ना, ये लगाते हैं। 12 बज चुके हैं जी, तमाम अहले वतन को, हम सब की तरफ से पाकिस्तान का जश्न आजादी मुबारक हो। रेडियो पाकिस्तान की सारी टीम की तरफ से, तमाम इस वक्त जो आरजेस मौजूद हैं और जो नहीं मौजूद, सब की तरफ से वंस अगेन जी जश्न आजादी मुबारक। और खालिक कायनात से दुआ ये है कि खालिक आने वाले साल को हमारे लिए, हर एक हम वतन के लिए, हर फर्द वाहिद के लिए बाईस रहमत बनाए, और हम सब अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकें अपने इस वतन अजीज की तरक्की के लिए, इसकी बेहतरी के लिए, और खालिक इसको इसी तरह से कायम दायम रखे, इसी तरह से ये चांद और सितारा चमकता रहे, दमकता रहे। एंड आई रियली वांटेड टू प्ले दिस ट्रैक दिल दिल पाकिस्तान, कि मेरा ख्याल है हम सब की तरफ से,
1: नेवर गेट्स ओल्ड, ये गाना कभी पुराना नहीं होता,
0: इट डस नॉट। मैडम शर्मा कह रही है बाजा बजाओ। मैं बाजे के बड़ा खिलाफ हूँ, मैं बाजा बजाऊंगा तो क्या ही फैसीन होगा।

0: वाओ
1: ओके मजा है यार
2: नॉस्टैल्जिया कहते हैं वो हिट हो गया नॉस्टैल्जिया मेरे वो वर्ड नहीं आ रहा
3: बिल्कुल नहीं इट्स फाइन और सब लोगों को चाहिए कि फैमिलीज के साथ बाहर जरूर जाएं और आज बच्चों की फरमाइश को जरूर पूरा करें
4: बाजे सबको लेके
3: बाजों की मैं बात नहीं करूंगा लेकिन बाहर जरूर जाएं और फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करें छुट्टी का दिन है नेशनल हॉलीडे इसीलिए आपको मिली है कि आप फैमिली के साथ गुजरें आगे सैटरडे संडे वैसे भी आ रहा है तो मैं कहूंगा कि
0: लॉन्ग वीकेंड आ रहा है
4: लॉन्ग वीकेंड है
0: और रश लग गया होगा नॉर्दर्न एरियाज में है ना
3: बिल्कुल ऐसे ही
0: वहाँ पे इस वक्त रश होगा टका के चल रहा होगा
3: बिल्कुल
2: एवरीवन इज एंजॉयिंग राइट नाउ लाइक एक अलग ही एक इवेंट है ना लेकिन उसमें एक एक खूबसूरती इसकी ये है कि ना इसमें पूरा पाकिस्तान एक हो जाता है
4: इसमें नहीं नहीं कोई
2: हर कोना इसको हर एरिया हर बंदे का सिर्फ एक ही पर्पस है पाकिस्तान जिंदाबाद
3: इसमें एक और मैं थोड़ा क्लियर क्लेरिफाई करूं कि आपने कहा है ना कि सब पाकिस्तान जिंदाबाद तो कहते हैं लेकिन मेरे नजदीक सबके अंदर ना बच्चा जिंदा हो जाता है
2: एग्जैक्टली
3: उनके अंदर जो बच्चा है ना चाहे वो जिस उम्र का भी बंदा होगा ना
2: exactly.
3: उसको वो याद आएगा
2: ऐसे ही है ऐसे ही
3: आप सर क्या ऐड कर रहे थे प्लीज बताइए
4: आप एक बात कह रहे थे कि सारे एक हो जाते
2: बिल्कुल ऐसे ही
4: और ये ऐसी बात है कि पाकिस्तान के ऊपर जब भी कभी भी कोई भी मुश्किल वक्त आया तो हम सारे एक हो
2: एक
4: जाते हैं
2: क्योंकि हम
4: ये नहीं कि आज के दिन ही जरूरी नहीं है
3: बिल्कुल
4: हम हमेशा से एक हो जाते हैं कोई भी मुश्किल
2: बिल्कुल ऐसी बिल्कुल ऐसी
3: और इस पुरवकार मौके पर आरजे डॉक्स ने भी हमें बहुत बेहतरीन मिठाई भी पेश की है और हम बहुत शुक्रगुजार
2: हैं मीठा करना बनता है मुंह मीठा करना बनता है
0: आजादी की मिठाई
4: बिल्कुल बिल्कुल आजादी के मौके पे
0: आप लोग भी वर्चुअल मिठाई खा सकते
4: हैं अपनी अपनी परचेज करते
2: हम एंजॉय करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा लग रहा है आप फील कर सकते हैं उसको
0: एग्जैक्टली अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कौन है हमारे साथ
5: सबसे पहले मेरी तरफ से और ऑल पाकिस्तान को जिसमें आजादी 79 ईयर बहुत बहुत मुबारक
2: आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो सर
0: बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया सर थैंक यू वेरी मच
5: तो आपको भी और मेरी तरफ से ऑल पाकिस्तान के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग ऑलवेज के अल्लाह पाक हमारे पूरे पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे और जितनी भी मुश्किल है सब ये सन 79
0: जबरदस्त हो गया थैंक यू वेरी मच जी उस्मान साहब
5: जी मेरी तरफ से सबको पाकिस्तान जिंदाबाद
0: बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच जी मुगल साहब थैंक यू जी सलमा राशिद साहिबा का मैसेज आया जी फराह अफजाल साहिबा कह रही हैं बहुत मुबारक हो डॉक्स पाकिस्तान का जश्न आज़ादी अल्लाह पाक हमारे मुल्क को हरा भरा आबाद रखे
4: आमीन, आमीन, आमीन।
0: और यहाँ पे शुरू हो गया तूफान बदतमीजी
4: तूफान बदतमीजी होने का टाइम हुआ जाता
0: नहीं करने वालों के लिए तो खैर नहीं होता हमारे लिए होता

0: वतन की मिट्टी गवा देना,
1: थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा गाया।
2: नगीरा नूर मैडम का ये
3: सर, बहुत सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में जबरदस्ती शामिल किया।
1: थैंक यू बहुत अल्लाह
2: आप भी इस तरह से इस्तेमाल कर रही हैं माशाल्लाह,
1: शायरा है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, मोहम्मद इरफान कह रहे हैं, मेरा दिल कह रहा है मैं भी कॉल करूं। सलमा राशिद साहिबा कहती हैं, हम न्यूक्लियर पावर बन गए, स्पेस में पहुंच गए, घर घर मोबाइल हैं, तरक्की और क्या होती है वैसे। हाँ वैसे टेक्नोलॉजी तो आपके पास कितनी आ गई है, और चाहते क्या है आप लोग, सोचने की बात है ना जी। तो वक्त हो चुका है 12:17, कॉल्स लेते हैं 12:30 पे साइन ऑफ कर दीजिए। हेलो,
4: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम,
4: मैं विद्या पीस बात कर रही हूँ लाहौर से।
1: कौन बोल रही हैं?
4: विद्या हफीज, लाहौर से बात कर रही हूँ।
1: विद्या हफीज
4: जी, जी
1: अच्छा अच्छा जी मैडम,
4: मेरी तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को और तमाम जितने भी हैं सुनने वाले सबको जश्न आजादी मुबारक।
1: बहुत शुक्रिया,
2: बहुत शुक्रिया मैडम।
4: हाँ जी,
2: थैंक यू।
4: हाँ, हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी है तो हमें ये दिन देखना नसीब हुआ है। और जितने भी सुनने वाले हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज दुआ में याद रखिएगा।
2: जरूर,
1: थैंक यू वेरी मच।
4: हाँ जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पासपोर्ट जिंदाबाद।
1: थैंक यू वेरी मच जी, ऐसी कॉल आए ना कितना मजा आता है, ऐसे कॉल आई पैगाम दिया यार। ओके, रजा आलम कह रहे हैं लव यू ऑल। अच्छा ठीक है, सारों से एक ही दफा यार। ओके, लव यू टू ब्रो। अच्छा जी, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? हेलो,
5: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं मैडम आप? खैरियत से? मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था आपकी तरफ से कुछ आएगा खाने के लिए हमें।
5: अच्छा, मुझे, मैं तो आप कहती 14 अगस्त को, मुझे मैंने पूछा भी किसी को कि कुछ है आज, कोई कट्टे वट्टे हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा अभी कोई प्रोग्राम नहीं है अभी कुछ।
1: आपको तो पता था मेरा प्रोग्राम तो होता है, मैं तो खा ही लेना सी।
5: तो फिर भी आना, कोई गल नहीं।
1: अच्छा।
5: इंशाल्लाह
1: पैगाम को लेना चाहेंगी
5: जी, जरूर। जितनी यकजहती से हम इस दिन को मनाते हैं, हमें हमेशा इसी तरह कायम और दायम रहना चाहिए और अपने मुल्क को मजबूत करने के लिए खुद मजबूत होना चाहिए और अपने मुल्क के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें सोचें और करें इंशाल्लाह। और दो लफ्ज बोलूंगी क्योंकि इतनी कुर्बानियों के साथ, इतनी कुर्बानियों से जो हमें ये वतन मिला है, और अभी देखे ना कैसी कैसे कमाल कमाल किस्म की हमारी फौज ने और हमारी आवाम ने किस दीदा दिलेरी और जिगरे से बहुत बड़े बड़े मसाइल का मुकाबला किया। थैंक यू। दो लाइन बोलूं सर?
1: जी जी।
5: तेरा करम मौला, ओ तेरा करम मौला, आई यहाँ खुशहाली की बहार, इतने बरस से है ये इंतजार, पाकिस्तान जो तूने है दिया, इसको जमीन पे जन्नतें दे बना, हो मौला तेरा करम मौला, ओ तेरा करम मौला मौला। जी सर,
1: क्या बात है, क्या बात है, छा गई हैं, छा गई हैं।
5: थैंक यू,
1: जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच जी,
5: थैंक यू। और जितने ये बैठे हुए हमारे हमारे सारे नए नए अटेंडेंट शुरू हो गए सबके सबके लिए बहुत ही दुआएं, बहुत अच्छा यार, बहुत जबरदस्त गा रहे हैं आप,
1: बहुत
5: और अल्लाह ताला आपको बहुत रखियां दे, बरकतें दे।
1: वो ए आर रहमान बोलने लगी थी,
5: मैंने साथ जाके ना से बोल
2: दिया, बस उन्होंने याद रख लिया, यही बहुत बड़ी बात है।
5: आपको अल्लाह ताला उन्हीं की तरह बहुत तरक्कियां और कामयाबियां दे, और बाकी जो बैठे हैं हमारे नए नए अटर्नीज, इनको बच्चे, इनको भी अल्लाह ताला कामयाब करे और बरकत दे।
1: बहुत शुक्रिया।
5: और आपकी जो टीम की कावशें है ना, देखे ना रंग ला रही, बच्चे अच्छा अच्छा बोल रहे हैं आके सारे, जो जितने भी, मैं उस दिन सुबह भी सुन रही थी, इतनी लड़कियां भी जो नई नई जो आई है, न्यू कमर है, वो सारी मतलब बड़ा अच्छा बोल रही थी और अच्छा काम कर रहे हैं सब, वेरी गुड।
1: آہستہ آہستہ بہت بہتر ہو جائیں گے. ابھی تو آغاز تھا اس لیے تھوڑی دقت کا سامنا ہونے رہا.
2: اور اس کا گریڈ سر آپ کو جاتا ہے.
1: تھینک یو.
5: نہیں نہیں بچیاں جو نئی انٹرنز جو لڑکیاں صبح تھی نا وہ بھی میں نے دیکھا کچھ بڑی کانفیڈنٹ.
1: آپ نے دیکھ بھی لیا انہیں؟
5: سوری سن لیا تھا. اور یہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں اسپیشلی عمر. عمر بڑے کانفیڈنٹ ہو کے آتے ہیں
1: ہے نا.
5: چلے
1: تھینک یو ویری مچ میڈم.
5: تھینک یو. آپ نے بہت اچھی رونق لگائی ہے سب کے لیے. بہت ہی دعائیں میرے جتنے بہن بھائی آ رہے ہیں آپ کو سب سننے والوں کو جشن آزادی بہت بہت مبارک.
1: تھینک یو.
5: بہت شکریہ. سب کو دعا
1: ملاقات. ہیلو ہیلو.
6: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
6: یسر بھائی لاہور سال بعد سے محمد نوید بات کر رہا ہوں.
1: کیا حال ہے نوید صاحب آپ ٹھیک ہیں؟
6: جی شکر الحمدللہ سر. آپ سنائیں.
1: بڑی مہربانی. کیا کہنا چاہیں گے
6: سر؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو جتنے بھی ہمارے بھائی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سب کو میری طرف سے جشن آزادی مبارک.
1: بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.
6: اور سر دو بول سنانا چاہوں گا.
1: سنائیں.
6: یہ میں ان کو سنانا چاہ رہا ہوں. یہ جو آتش بازی ہو رہی ہے باہر جو غلط کام کر رہے ہیں. کہندا ہے اے پتر ہٹا تے نہیں وک دے تو لب دی پھرے بازار تا

ऐ वतन प्यारे वतन, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर।

0: थैंक यू
1: यार, कमाल है इस गाने की वाइब,
0: बहुत डिफरेंट है,
1: बहुत डिफरेंट, बहुत आला, कमाल कमाल छा गए जी। मोहसिन, हमने बिल्कुल ग्रीन कलर पे बात करनी थी, नहीं की
2: जी।
1: और आप जाते जाते क्या कहेंगे?
2: सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार सिर्फ झंडियाँ या झंडा लगा देना ही नहीं है, बल्कि उन तमाम शहीदों को भी याद करना है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान दी। पाकिस्तान के तमाम तर कवानीन की पासदारी ही पाकिस्तान से मोहब्बत का नाम है। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा।
1: बड़ी गल, बड़ा संजीदा मैसेज दे दिया।
0: ज़्यादा संजीदा भी है, शो को सपोर्ट नहीं कर रहा ये।
2: कि मेरे से ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे।
1: अच्छा जी, जी एआर नासिर, आप क्या कहना चाहेंगे?
3: सर, मैं भी ये कहना चाहूँगा कि हमने पहले भी ये बात की शो में कि 14 अगस्त को हम सब यही बात करते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना चाहिए, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मॉरल वैल्यूज़ हम एक दूसरे को कहते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे अंदर कितनी खामियाँ हैं। मैं सब सामीन से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि 3 से 4 मिनट निकालें, एक पेज और पेन पर वो चीज़ें लिखें जो आप अभी तक नहीं आप इम्प्लीमेंट कर रहे और आप करना चाहते हैं अपने अंदर चेंज करने के लिए, क्योंकि मुल्क तब बदलेगा जब एक एक फर्द बदलेगा। बहुत शुक्रिया सर,
1: बहुत अच्छी बात की जी। उमर
4: सर, 14 अगस्त पे मैसेज तो मेरा सबसे पहले इसको मैम आज़ादी जश्न आज़ादी मुबारक हो बहुत बहुत, और सर इसके साथ साथ एक मैसेज है कि आप 14 अगस्त पूरे जोश जज्बे के साथ मनाएं, ज़रूर मनाएं, पर इसके साथ साथ फैमिलीज़ का ख्याल रखें। जो फैमिलीज़ बाहर आई हैं उनके साथ जो है वो जो हर साल हम देखते हैं उससे थोड़ा ग्रेस करें, इंजॉय करें, जश्न आज़ादी मनाएं, पर उनका भी ख्याल रखें फैमिलीज़ का।
1: जी अबूबकर
5: जी। सर, सबसे पहले तो पाकिस्तान जिंदाबाद, और उसके अलावा मेरा एक छोटा सा मैसेज सबके लिए ये है कि डेली जब सुबह सारा दिन गुजारें और शाम को बैठें, तो एटलीस्ट आप एक ऐसा काम ज़रूर करें जो आपको लगे कि वो ऐसा प्रोग्रेसिव काम था जिसने पाकिस्तान को आगे बढ़ाने या उसकी प्रोग्रेस में कुछ तो कंट्रीब्यूट किया इंडिविजुअल लेवल पे।
1: बिल्कुल,
5: ताकि जब हमारे दिल में कोई रिग्रेट ना रहे कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ कर नहीं सके।
1: बहुत अच्छी, बहुत अच्छी।
5: बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद
1: जी। और थैंक यू वेरी मच आप सबके आने का यहाँ पे। और जाते जाते हम एक नारा लगाएंगे, लेकिन ग्रीन कलर के बारे में सिर्फ इतना बताता चाहूँ आपको, ग्रीन कलर जो पाकिस्तान के झंडे में भी चुना गया, इसके पीछे भी रीज़न है। और आज जो है साइकोलॉजी जो है इतना आगे तरक्की करके पहुँच चुकी है, तो उसमें भी इसके बड़ा वजाहत के साथ आता है। बस इस पर पहले भी डिस्कशन हो चुकी, चंद एक नुक्ते हैं जो बयान करूँगा और फिर इजाज़त लूँगा आपसे। ग्रीन कलर ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है, बैलेंस को, पीस को, और इसके अलावा ये हीलिंग के लिए बड़ा यूज़ होता है। आपने कभी गौर किया हो जहाँ पे भी डॉक्टर या हकीम या जो भी इस तरह की मेडिसिन वगैरह वहाँ पे ग्रीन कलर यूज़ करते हैं, और फितरत है ही ग्रीन जी। और इस्तेकाम है, स्टेबिलिटी है, होप है, उम्मीद है, फ्रेशनेस है, ताजगी है। और डॉक्टर भी यही कहते हैं कि जब आपको कोई मसला आ जाए तो आपने आँखों का, ख़ास तौर पर आपको अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो आपने क्या करना है, आपने सब्ज़े में बैठ जाना है, सब्ज़े को देखना है, आपकी आंखों को सुकून मिलता है
2: जी।
1: सो ग्रीन कलर इज़ रियली गुड, और ऐसे नहीं है चुना गया। एंड मैं तो अक्सर इसके बारे में कहता हूँ कि जो दीन आया उसमें मैं 3 नाम देखता हूँ। अल्लाह के रसूल का नाम है मोहम्मद,
2: मोहम्मद,
1: और फिर उनकी बेटी है
5: बेशक
1: फातिमा,
5: बेशक,
1: फिर उनके साथ हजरत अली जो चले जंगों में, और जहाँ जहाँ पर मुसलमानों को दिक्कत का सामना हुआ वो अली शेर की तरह से गरजे, झपटे और फतह याब किया मुसलमानों को।
5: क्या बात।
1: और फिर पाकिस्तान को जब मैं नज़र डालता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे ये
4: कभी शेर खुदा का है तो
1: शेर खुदा है जी। तीनों नाम मुझे इकट्ठे नज़र आते हैं, मोहम्मद, अली हैं, और बहन उनकी फातिमा। तो इसीलिए इसकी बुनियाद भी अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगी कलमे की बुनियाद है।
2: बेशक
1: वो स्टेट भी बनी کلمے کی بنیاد پر, اور یہ بھی بنی کلمے کی بنیاد پر. رسول کائنات نے بھی یہی کہا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں,
2: ٹھنڈی ہوائیں,
5: سبحان اللہ.
1: اور علماء نے یہ بات کی تو اس میں پاکستان کا ذکر کیا. خراسان کے حوالے سے بات کی جائے, خراسان کے خطے کی جہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوگا تو اس میں بھی پاکستان آتا ہے.
5: بالکل,
1: اسی وجہ سے ہماری وجود میں آنے سے لے کر آج تک بہت سارے اسلام دشمنوں کو تکلیف رہتی ہے,
5: بالکل,
1: اور تکلیف رہے گی کیونکہ ہم انشاءاللہ کنٹریبیوٹ کرنے والے ہیں,
2: ہم چاہتے ہیں کہ انہیں یہ تکلیف رہے,
5: ان کی آنکھوں میں کھٹکتے رہیں,
1: اور انشاءاللہ اور خالق کائنات اس وطن عزیز کو اسی طرح سے قائم دائم رکھنے والا ہے. آپ کے سب سننے والوں کے لیے میسج یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اس طرح سے سوچیں, اس طرح سے کام کریں جس طرح سے آپ اپنے گھر کے لیے سوچتے ہیں, اور یہاں کے جتنے افراد ہیں ان کے لیے اس طرح سے سوچیں جس طرح اپنے بھائی بہن اور گھر میں موجود تمام رشتوں کے بارے میں سوچتے ہیں,
2: بہت خوبصورت,
1: ان کا بھلا کرنے کے لیے, تو چیزیں آٹومیٹکلی بہتر ہونے لگیں گی. کوئی لمبا چوڑا لیکچر نہیں ہے, بس اسی کے ساتھ اجازت دیتے ہیں, اور اجازت آپ کو نہیں دے رہے, چلیں آپ سے لیتے ہیں, چلیں آپ کو بھی اجازت دیتے ہیں, آپ بھی جائیں. پاکستان
2: زندہ,
1: لیں جی, ٹیک کیئر, بائے بائے, اللہ حافظ. اینڈ یس, کل لاہور کے یہاں اسٹیشن سے اسپیشل ٹرانسمیشن ہوگی, ڈو جوائن اس, ٹیک کیئر, بائے بائے, اللہ حافظ.

चलते हुए किस आग के अंदर चलते हुए जंजीर दुखों की तोड़ाए आवाज करों को छोड़ाए ये कितने बरस का किस्सा है जो रूप बदन का हिस्सा है ये पाकिस्तान तो कब से है पर इसको फिर से सजाना है।

करता है, अब ना ही करना धरना है, अब खुद ही ठीक भी करना है, हर दुख को सुख में बदलना है, ये ध्यान भी रखना है हमको, इस राह से कैसे गुजरना है।

ड्रामा सीरीज नूर का मस्कन। कास्ट बरकतुल्ला, सज्जाद केशवर, काशिफ महमूद, हाशिम बट, नौरीन फातिमा और मेमुना सत्ता। कहानी उमेरा अहमद। ड्रामा की तश्कील अमरीन खालिद। एडिटिंग बरकतुल्ला। प्रोड्यूसर मेमुना सत्ता।

0: दादा बू देखिए मैं तैयार हूँ और आपने अभी तक ट्रैक सूट भी नहीं पहना।
1: फकास, वो देखो तुम्हारी दादी मेरा ट्रैक सूट लेकर आ रही है। तुम चलो और मैं आया।
0: मैं गेट के पास आपका इंतजार कर रहा हूँ।
1: हाँ बकास, मेरी बात सुनो। बेटे आपने अपने वॉकमैन में कौन सा कैसेट रखा है?
0: अगस्त का महीना आपका महीना, मैं भी वही मिले नक में सुनता हूँ जो आप इन दिनों में सुना करते हैं।
1: ओ बिल्कुल ठीक।

0: दादाबू आप रोजाना इसी सड़क पर मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं?
1: हाँ बेटे, इस सड़क का एक एक सर्रा, एक एक कोना, हाँ हाँ मेरा देखा भाला है।
0: दादाबू रात क्या बारिश हुई थी?
1: हाँ सारी रात मूसलाधार बारिश होती रही। देखो तो सही, दरख्त पौधे धुल कर कितने निखर गए।
0: वो देखें दादाबू, रात की बारिश की वजह से झंडियां भी गिर गई हैं। मैं इन्हें आपके लिए उठा के लाता हूँ।
1: जीते रहो जीते रहो, शाबाश।
2: प्रकाश वो देखो, वो वाली, वो झंडू था, वो जो वाली। और वो
1: लाओ लाओ मेरे पास, लाओ लाओ लाओ, शाबाश ले आए।
0: ये लीजिए दादाबू, मेरे एक दोस्त की हॉबी है टिकट जमा करना। एक दोस्त मेरा सिक्के ही जमा करता रहता है और आप ये झंडियां जमा करते हैं।
1: वकास बेटे, एक तो तुम्हारी ये तेज बोलने की आदत से मैं बहुत तंग, और हाँ ये कलेक्शन है मेरी, दुनिया की अजीब कलेक्शन। मैं हर साल जो भी झंडी उठाता हूँ उसे रोज की तारीख के साथ अपने खजाने में जमा करता हूँ। बहुत साल पहले मेरे बाप ने पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखते हुए जमीन से हूँ उसे रोज की तारीख के साथ अपने खजाने में जमा करता हूँ। बहुत साल पहले मेरे बाप ने पाकिस्तान की सरजमीन

0: जी
1: आपकी कलेक्शन तो दुनिया की अजीब तरीन चीजों पर मुश्तमिल है।
0: हाँ, मैं हर उस झंडी को तारीख और सन के साथ अपने एल्बम में महफूज कर लेता हूँ।
1: दादाबू वो देखिए, इमरान और उसके दोस्त आज लेट हो गए हैं।
2: जाने इस मुल्क का क्या बनेगा, बाहर की दुनिया के लोग तो इस बात पर चीख रहे हैं कि ये मुल्क चलने वाला नहीं है।
3: हाँ यार, अब तो इस मुल्क के हालात बहुत खराब हो गए। हेलो अंकल, गुड मॉर्निंग।
0: शुभ बखैर, शुभ बखैर।
3: मैंने पिछले दिनों एक मजमून पढ़ा जिसमें लिखा था मुल्क चलने वाला नहीं आइंदा सालों में। बहुत भारी साल है।
2: जाने इस मुल्क का क्या होगा, मैं तो बिल्कुल मायूस हो चुका हूँ इस मुल्क के मुस्तकबिल से।
0: वकास बेटे, ये लोग कभी भी शुक्र अदा नहीं करते, हमेशा नाशुक्री की बात करते हैं। जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना बेटे, तब मैं अपने अब्बू के साथ पाकिस्तान आया था। मेरे अब्बू पटियाला के जिम्मेदार थे, हमारा घराना एक पुरसकून घराना था।

0: एक तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि ये आजकल गांव में अब मुस्लिम लीग वाले रोजाना ही आ रहे हैं। वो कल मैं चौपाल में बैठा हुआ था ना, तो सारे यही बातें कर रहे थे।
1: हम अच्छे खासे पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे गांव में सबके दुख सुख सांझे हैं, फिर ये मुस्लिम लीग वाले क्या कहते हैं?
0: क्या कहना है, वो तहरीक पाकिस्तान जोर पकड़ रही है ना, तो इर्द गिर्द के गांव और देहातों में ये रोजाना जलसे जुलूस हो रहे हैं, और क्या होना है।
1: हमारे गांव के लोग अनपढ़ हैं, फिर भी उन्हें पता है कि जब हमारे गांव में सुख ही सुख है, सुकून ही सुकून है, तो फिर हम अपना गांव, अपनी जमीनें छोड़कर क्यों जाएं भला?
0: हम बात तू ठीक कहती है, अच्छी बात है।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम। ओ पुत्र क्या हाल है तुम्हारा? है
1: आप मजर पुत्र, इधर चारपाई पे बैठा है, यहाँ चारपाई पे बैठ।
0: तू आया कब है, पता ही नहीं चला दे रहा है।
2: अब्बा जी बस मैं दोपहर को आया था, आप खेतों में गए हुए थे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा।
2: अब्बा जी मुस्लिम लीग वाले गांव में आए हुए, आप मुस्लिम लीग वालों को वोट क्यों नहीं देते?
0: और तू छोड़ इन बातों को यार, तू ये बता कि जलंधर में तुम्हारी तलीम कैसी चल रही है?
2: बस अब्बा जी ठीक ही जा रही है।
0: मेरा ख्याल है कि जब तौसीफ अपना बड़ी क्लास में जाए ना, तो इसे भी जलंधर भिजवा दूं। ओ तौसीफ
3: जी। अब्बा जी
0: इधर आओ, इधर
1: इधर आ पुत्र,
0: इधर। ओए जलंधर जा रहा है?
4: अब्बा एक बात तो बता, ये तो मुझे और मदर भाई को तो पढ़ा रहा है, शकीला बाजी और रुबीना बाजी को क्यों नहीं पढ़ने देता?
0: ओए खबरदार खबरदार, जो लड़कियों की तलीम के बारे में बात की है, और ये कारी मेरे तो ठीक है। बस
1: हमने लड़कियों को पढ़ाकर क्या करना है?
0: हाँ बिल्कुल ठीक बात कही है तुमने।
1: हमारे गांव में और कोई लड़की पढ़ी है जो हमें न पढ़ाए?
2: अम्मा तुम तो ये बात ना करो, तुमको तो अपनी बेटियों को स्कूल भिजवाना चाहिए, ये बेचारियां सारा दिन घर में बंद रहती हैं। तुम तो फिर कभी पड़ोस में चली जाती हो और कभी खेतों में अब्बा का खाना लेकर चली जाती हो।
1: तौबा कर मजर पुत्र, तौबा, लड़कियों और तलीम, क्यामत आ जाएगी क्यामत।
0: मजर और मजर दे पुत्र, मैं देख रहा हूँ ये शहर की तलीम से ना तुम्हारे पर पुरजे निकल आए हैं, बगावत की बो आने लगी है तुम्हारी बातों से।
1: ये पढ़ने की बजाय सारा दिन जिना साहब के जलसों में जाने लगा है।
0: क्या ओ तुम मुस्लिम लीग के जलसों में भी जाते हो? है
2: अब्बा, मैं जब से जिना साहब के जलसों में जाने लगा हूँ ना, मेरी आंखों के सामने से बहुत से पर्दे हट गए।
4: अब्बा अब्बा ये मदर भाई जो है ना, ये बता रहे थे कि मुस्लिम लीग वाले मुसलमानों को अपना उनका ना हक दिलवा रहे हैं।
2: शकीला तू इतनी देर से खामोश क्यों बैठी है, तू भी तो कुछ बोलना।
5: मजर भाई अब्बा जी की और आपकी बातें सुन रही थी, मैं तो हर वक्त अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि हम मुसलमानों को जल्दी

0: दादाबू आप फिर माजी में गुम हो गए थे।
1: हाँ बेटा, माजी ही तो हमारा सरमाया है। माजी की यादें जिंदगी को हकीकत का रूप देती हैं। मैं घर में सबसे छोटा था, मगर भाई ने मेरे दिल में भी आजादी की छोटी सी किरण जगा दी थी। भाई वापस जालंधर चला गया था।
0: दादाबू, आपको किस बात ने कायल किया कि जिना साहब सच कहते हैं, जबकि आपके अब्बू ये बात सुनना भी नहीं चाहते थे।
1: बेटे, मदर भाई जब जिना साहब के दर से सुनकर आते तो उनके चेहरे पर अजीब रोशनी बिखरी होती, आंखों में आजादी के ख्वाब तैर रहे होते थे। मैं भाई का चेहरा पढ़कर ये जान गया था कि मेरा भाई जो कह रहा है वो सच कह रहा है।
2: अब्बा, जिन्ना साहब की बातों से तो हिंदू लीडर भी डरने लग गए हैं। अंग्रेज और हिंदू मिलकर मुसलमानों के खिलाफ जो साजिशें कर रहे हैं, आपको उनका क्या पता?
3: कुछ दिनों की बात है, देख लेना, अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर जाएंगे, तुम देख लेना, ओए हम इनको पगा कर ही दम लेंगे।
2: लेकिन अब्बा, आप ये नहीं जानते कि मुसलमानों की जगह हिंदू ले लेंगे।
3: ओ वैम है तुम्हारा वैम, ओए हम इस सरजमीन के रहने वाले हैं, यहीं पले बड़े हैं।
2: मगर अब्बा, आप ये नहीं जानते कि हम और हिंदू अलग अलग कौमें हैं। जिना साहब से जब किसी ने पूछा कि दो कौमी नजरिया क्या है, तो उन्होंने बताया कि बर सगीर में जब एक आदमी मुसलमान हुआ था तो उसी दिन दो कौमी नजरिया हकीकत का रूप धार चुका था।
3: ये तो पागल लड़का है, खाम खा जज्बाती तकरीरें सुनकर ना पीछे चल पड़ा है।
2: अब्बा, मैं सोचता हूँ कि आप कब ख्वाबों की दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में आएंगे। शायद उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी।
3: ओए पुत्र, चुपाल में सब लोग सियासत और बात करते हैं, जिना की तकरीरों का हवाला दिया जाता है, सब यही कहते हैं कि हमें दूसरों के कहने में आकर अपना कारोबार, अपनी जमीन नहीं छोड़नी चाहिए।
2: अब्बा, पंजाब के इलाकों में कत्लो गारत हो रहा है, मैं आप लोगों के लिए फिक्रमंद रहता हूँ।
3: यार, तुम हमारे लिए फिक्रमंद ना हो। अच्छा, हमने ना तो कोई गलती की है, जब हमने कोई गलती नहीं की तो हमें कोई क्यों मारेगा, मुझे बता।
4: मगर देखो जी, किसी को मारना, घर जलाना, खानदान कत्ल कर देना, भला कहाँ का इंसाफ है।
3: हाँ, मैंने भी कल चौपाल में यही बात की थी, तो चौपाल के लोग कहने लगे कि जो फसादी लोग हैं ना, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। भाई, मैंने अपनी सारी जिंदगी इन लोगों के साथ गुजारी है, मगर कल इनका लहजा मेरी सोच से भी आगे था। हिंदुओं के लहजे में बहुत नफरत थी।
4: आप ठीक कहते हैं।
3: मैं तुझे कब से कह रहा था कि मजर को समझाओ कि मुस्लिम लीग के लिए ये काम करता है, स्टूडेंट फेडरेशन चला रहा है। देखे ना, वहां के हिंदू अब सारे इसके खिलाफ हो गए हैं। और तो और, चौपाल के लोग भी मुझे बार बार कह रहे हैं कि भाई अपने बेटे को मना करो उसे।
4: अरे बच्चा है, क्यों डांट रहे हो इसे, मैं इसे समझा दूंगी, बस आप फिक्र ना करें।
5: समझा तो लेंगी अम्मा, लेकिन मैं तो एक ही बात कहती हूँ, बातें मजर भाई ठीक कहते हैं।
4: मजर, क्या हो गया है तुम्हें?
2: अम्मा, अम्मा मेरी एक बात याद रखना, जो लोग पाकिस्तान के मुतालबे को फतूर कह रहे हैं वही पाकिस्तान के लिए कल जागेंगे। जो जिना साहब की बात नहीं सुन रहे वही कल उनके हाथ चूमेंगे। जिना साहब एक प्रैक्टिकल मुसलमान है। अम्मा देखिए, 1945 और उस साल के इंतखाबात में मुसलमान तमाम सीटें जीत गए। और इलेक्शन में कांग्रेस की हिमायत करने वाले मुसलमान हार गए।
6: जानता हूं मैं, जानता हूं।

0: दादाबू, आप बात करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। आप मुझे अपने मज़र भैया के बारे में बता रहे थे, पाकिस्तान के बारे में बता रहे थे।
1: हाँ हाँ, 3 जून 1947 को पाकिस्तान का ऐलान कर दिया गया। मेरा भाई खुशी से पागल हो रहा था। वो कह रहा था कि अबू अबू हम सब पाकिस्तान जाएंगे। मेरी बड़ी बहन की शादी होने वाली थी। मदन ने कहा, अबू मैं बहन को इस मर्तबा अपने साथ ले जाऊंगा, शादी से पहले वो चचा के घर कुछ दिन रह ले। मेरी माँ, बड़ी बहन और भाई उस रोज जो घर से निकले तो फिर वापस ना आ सके। भाई की गर्दन सजा के तौर पर एक दरख्त के साथ टांग दी गई थी और माँ और बहन की लाश के टुकड़े इधर उधर हमें बिखरे मिले। हाँ
0: संभलिए दादाबू, संभलिए।
1: ओह, गिरने लगा था।
0: फिर क्या हुआ दादाबू?
1: फिर मेरे बाप ने मेरी माँ बहन और भाई के टुकड़े खुद जमा किए और उन्हें दफन कर दिया। मेरा बाप खामोश था, लेकिन गांव के लोगों की बातें उसके कानों में जहर घोल रही थी। इन बातों ने उसकी आंखें खोल दी थी।
2: भाई आप सब जानते थे, मज़र मेरा बेटा था। मैं और आप देखने इस चुपाल में मुद्दतों बैठे एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहे।
3: ओ अहमद यार, हमें भी बड़ा अफसोस है।
2: नारायण दास, सिर्फ अफसोस? तू भी कैसा सरपंच है।
4: ओ तू जानता है ना, लड़कों का गर्म खून है। वो हमने तुझे बार बार समझाया था कि अपने बेटे को भाज कर, वो बड़ा लीडर बन रहा था।
3: ओ अब तो उसने खुल्लम खुल्ला बंटवारे की बातें शुरू कर दी थी।
4: गलती तुम्हारे बेटे की थी, उसने ही गलत काम की इब्तदा की थी।
2: अच्छा सरपंच है भी तू, न मुझे एक बात बता। ओए अपना हक मांगना गलती थी, ओए अपने बेटे के लिए तहफ्फुज मांगना गलती थी।
3: ओ बस बस बस, कह जो दिया है भूल जाओ इस वाक्य को।
2: भूल जाऊं अपने बेटे को, ओए अपनी मासूम बच्ची को जिसके सुहाग के जोड़े बन रहे थे। ओए भूल जाऊं अपनी घरवाली को जो मेरे बच्चों की माँ थी, मेरी तन्हाई की शरीक थी।
4: ओ हमने तुम्हें इशारों में समझा दिया था, ओ तुम ही ना समझे तो हम क्या करते।
2: ठीक कहते हो तुम, मैं वाकई तुम्हारे इशारे न समझा और हवा का रुख न पहचान सका। मैं तुम लोगों को अपने जैसा समझ बैठा था। काश मैं मजहर की बात समझ लेता। तौसीफ बेटे, मुझे इसका बिल्कुल दुख नहीं है कि मैंने इन हाथों से अपने बीवी बच्चों की लाशों के टुकड़े समेटे। तुम्हारी दोनों बहनों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कुएं में छलांगें लगा दी, लेकिन बेटे मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी ये कुर्बानियां बिल्कुल रायगा नहीं जाएंगी और कल इंशाल्लाह हम हिजरत करके अपने वतन, अपनी मिट्टी, अपने पाकिस्तान में पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान।

0: दादा अबू, ऐसा लगता है सूरज निकलने वाला है।
1: हाँ बेटा, बरसात में जब सूरज निकलता है तो अपने होने का एहसास अपनी गर्मी की शिद्दत से दिलाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कुछ लम्हे ही तो मिले हैं, जाने कब और कहाँ से काली बदनियाँ आकर भरे आसमान पर छा जाएंगी। यही तो जिंदगी है।
0: अच्छा, तो आप बता रहे थे कि आपके अब्बू ने अपनी जिद छोड़कर पाकिस्तान आने का इरादा कर लिया।
1: हाँ बेटे, बेटे की शहादत ने उनकी आंखों पर बंधी पट्टी खोल दी थी। अब वो दुनिया को चौपाल की आंखों से नहीं, अपनी आंखों से देखने लगे थे। तब उन्हें पता चला कि हम मुसलमानों का रास्ता हिंदुओं से जुदा है।
0: जी दादा अब्बू, ये तो मेरे अब्बू ने भी बताया था कि ना सिर्फ हमारा मजहब बल्कि रहन सहन, मरना जीना सभी उनसे अलग था।
1: हाँ बेटा, वो इंसान से ज्यादा गाय को प्यार करने वाले लोग हैं। एक गौ माता की खातिर इंसानों का खून बहाने से भी गुरेज नहीं करते।
0: जब आपका खानदान पाकिस्तान में दाखिल हुआ दादा अब्बू, आपने क्या महसूस किया?
1: खानदान कहाँ रहा था मेरे बच्चे? मैं और मेरा बाप काफले वालों के साथ सफर कर रहे थे, तो कभी कभी मुझे यूं लगता था जैसे मेरी माँ हाथ हिला हिलाकर हमें अलविदा कह रही हो।
2: तुम हिजरत कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तौसीफ की शक्ल में।
3: अब्बा, आप उदास ना होइएगा। बेटियां तो पराया धन होती हैं। हम तीनों ने अपना खून पाकिस्तान की उन बेटियों की खातिर दिया है जो पाकिस्तान में महफूज रहेंगी।
2: हमारा खून रायगा नहीं जाएगा। जिस मुल्क की तामीर के लिए मजहर जैसे बेटे और मेरी बेटियों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया है, वो मुल्क कायम रहने के लिए बना है।
1: हमारा काफिला चलता रहा। मैं अपने बहन भाइयों को याद करता रहा। हमारे काफिले में बहुत से लोग थे, जख्मी बूढ़े, थके हुए मर्द, कुछ शिकस्तपा औरतें। ये सब मंजिल की तरफ बढ़ते नजर आ रहे थे, लेकिन इनके चेहरों पर अज़्म व हिम्मत और यकीन के जज्बे खिले हुए थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो अपने अरमानों, अपनी उमंगों से आरास्ता अपने पाक वतन में जा रहे हैं। वो फजर का वक्त था।
4: बाबा, बाबा मैं थक चुकी हूँ। मेरे जख्मों से निकलने वाला खून मट्टी और गर्द से जम गया है। अब मंजिल और कितनी दूर है?
5: अब्बा, पाकिस्तान कब आएगा?
6: बस अपनी हिम्मत को यकजा कर लो, चंद लम्हों में हम ये सदियों की मुसाफत पार कर जाएंगे। फिर हम होंगे और हमारा प्यारा वतन।
2: वो देखो, सुबह की रोशनी फैल रही है। सूरज की किरणें पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमें खुश आमदीद कह रही है। वो देखो, वो देखो,

0: आतिफ आतिफ पुत्र देख हम पाकिस्तान पहुंच गए हैं पुत्र। और बेटर आप इस मंजिल पर सजदा करें। आ जा मेरा पुत्र आ जा। मेरा पुत्र थोड़ी सी मिट्टी उठाकर मुझे दे, मैं इसे अपनी आंखों से लगाना चाहता हूँ। और ये मिट्टी मैं उस मिट्टी के साथ मिलाकर रखूंगा पुत्र, जिसमें मेरे जवान पुत्र मदर का खून शामिल है। और ये पाक मिट्टी जब उस मिट्टी में मिलेगी जिसे काफरों ने मेरे मदर पुत्र जैसे सैकड़ों जवान पुत्रों के खून से लाल किया था, तो मेरे पुत्र मदर की रूह को सुकून मिलेगा। मदर बेटा और पुत्र देख, और देख तेरा बाप तेरे ख्वाब को ताबीर के रूप में देख रहा है। और देख मेरे बच्चे देख।
1: तुम रो रहे हो, तुम तो उस दिन भी हंस रहे थे जब जब जब जब जब जब जब तुमने मसर के टुकड़ों को उठाया था। तुम्हारी आंखें तो मेरी और शकीला की मैयत पर भी नहीं रोई थी।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, मैं रो तो नहीं रहा। ये आंसू मेरे जवान पुत्र की मैयत के लिए नहीं है। मैं तो इस मिट्टी को अपने आंसुओं की नमी से तरोताजा कर रहा हूं। आज मैं अपने वतन की मिट्टी को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैं अपने वतन की आन बान और जान के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दूंगा, वक्फ कर दूंगा, वक्फ कर दूंगा, वक्फ कर दूंगा।

वो कास बेटे अपने अब्बू के वो आंसू वो दुख मैं आज भी महसूस करता हूं। मैं खामोशी से अपने आंसुओं को छुपाए अपने पाप की दीवानगी देखता रहा। मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि मेरा बाप क्यों रो रहा था। जमीने जायदाद छिन जाने का दुख था या बेटे बेटियां और बीवी का गम था। जब मैंने पूछा तो कहने लगा, तौसीफ मैं जिंदगी में कभी नहीं रोया, बड़े से बड़ा दुख और मुसीबत पर भी मैं हंसता रहा हूं। आज मुझे जी भर कर रोने दो, आज के बाद मैं कभी आंसू नहीं बहाऊंगा, कभी आंसू नहीं बहाऊंगा। मैं कभी अपने तड़पते बाप की तरफ देखता, कभी कैंपों में मौजूद उन लोगों को देखता। सभी की एक कहानी थी, सभी का एक दुख था, सबने अपने खानदान अपनी दौलत को कुर्बान करके अपने पाक वतन में कदम रखा था। कैंपों में आने वाले पाकिस्तानी हिजरत करके आने वालों को सलाम करने, उन्हें अपनाने के लिए चौक दर चौक कैंपों में आ रहे थे।

0: गुज़िश्ता अक़सात में ये कहानी सफ़र करते करते यहाँ तक आ पहुँची। आइए आज इस कहानी की चौथी किस्त सुनते हैं।
1: दादाबू, क्या ये सच है कि फातिमा जिन और मुस्लिम लीग की दूसरी खवातीन खुद कैंपों में आने वालों की तीमारदारी किया करती थी?
2: हाँ बेटे, उन दिनों हर शख्स सिर्फ और सिर्फ ये चाहता था कि वो आने वालों को अपना सके। हम कैंप में रहने लगे, हमने क्लेम जमा करवाया, हमें जमीन और घर अलाट हो गए। मेरे बाप ने मुझे पढ़ने के लिए लाहौर भिजवा दिया था।
1: दादाबू वो देखिए, मैडम मेक ऑफ आ रही हैं।
2: अरे ये तो मिसेस रहीम हैं। ये तो रोजाना यहाँ से गुजरती हैं, तुम इन्हें मेक ऑफ क्यों कह रहे हो?
1: दादाबू औरतें मेकअप करती हैं खूबसूरत लगने के लिए, यानी जो हैं उससे थोड़ी ऊपर। मगर ये आंटी तो मेकअप करती हैं ऐसा लगता है कि सुबह सुबह आटा मल लिया हो।
2: खामोश खामोश, बुरी बात है, किसी के बारे में ऐसी बात नहीं करते। वो देखो वो करीब आ गई हैं, करीब आ गई हैं।
3: आज तो थकी गई मिसेज रहीम, बहुत कुछ लगता है ज्यादा ही लंबी हो गई है।
4: लेकिन एक बात है ना, स्मार्टनेस तो फिर ऐसे ही आएगी, पर आपको तो करना पड़ेगा।
3: आपको बताओ, मैंने तो आजकल चिकनाई वाली सारी चीजें खानी छोड़ दी हैं।
4: मुझे तो आजकल समझ ही नहीं आ रही कि क्या करना है और क्या नहीं करना। बस अब इस मुल्क में गुजारा नहीं है।
3: क्यों, क्या हुआ?
4: बस रहीम ने तो कैनेडा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है।
3: अच्छा,
4: बस चंद हफ्तों में सारा काम हो जाएगा, फिर हम सब वहीं जाकर सेटल हो जाएंगे। पाकिस्तान में तो बस मजबूरी ही से रहा जा सकता है।
3: हाँ, तुम्हारा तो सारा मेकअप और ससुराल भी कनाडा में है।
4: हाँ, वो लोग तो कब के शिफ्ट हो चुके हैं, बस रहीम की हुब्बुल वतनी खत्म करते करते खासा वक्त लग गया।
3: चलो देर आए दुरुस्त आए।
2: इस मुल्क में कुछ भी नहीं है, ये जुमला पिछले कई सालों से बहुत से लोगों से सुन रहा हूँ। इन लोगों की बातों ने मेरी रूह को जख्मी कर दिया है।
1: दादाबू ये लोग कहीं पर भी चले जाएं, लोग तो इन्हें पाकिस्तानी ही कहेंगे ना?
2: हाँ मेरे बेटे, काश ये बात इन लोगों को समझ आ जाए। देखो बेटे, हर मुल्क की जमीन एक टुकड़ा होता है। जमीन के इस टुकड़े पर बसने वाले ही उस मुल्क की पहचान होते हैं। इस मुल्क ने हमें क्या नहीं दिया, इज्जत दौलत तहफ्फुज। अगर ये लोग यहाँ न होते, बड़े बड़े बंगले, ये गाड़ियाँ, फैशन के तौर पर अपने वतन पर तनकीद करना, ये सब कुछ न होता।
1: छोड़िए दादाबू, आप अपने अब्बू के बारे में बताइए कि वो यहाँ आकर बहुत अमीर हो गए थे।
2: हाँ बेटे, रुपया पैसा उन पर हमेशा मेहरबान रहा। उन्होंने दोबारा शादी नहीं की, बस अपनी जिंदगी दूसरों के लिए वक्फ कर दी।
5: रसीफ पुत्री, क्या बात है, इस दफा तुम को आधी छुट्टियां गुजार कर आए हो हैं?
6: जी अबू जी, इस दफा मुझे एक असाइनमेंट मिली थी, प्रोजेक्ट मिला था। और आप जानते हैं ना कि सोशल वर्क में एमएससी करते हुए पढ़ने से ज्यादा लोगों को पढ़ना पड़ता
5: है। ये तो है।
6: अब एक बात बताइए, आप तन्हाई से उकता तो नहीं गए?
5: ओए पगले, मैं तन्हा कब हूँ? मेरे इर्द गिर्द हमेशा लोगों का मेला लगा रहता है, उनके दुख सुख में तिनका तिनका चुनता रहता हूँ मैं। और वो जख्म जख्म जब मेरे पास आते हैं ना, तो मैं उनके जख्मों पर मरम रखते रखते अपने आप को भूल जाता हूँ। अब तो छोड़ो इन बातों को, तुम ये बताओ, खाना वाना खाया तुमने? और मैंने तुम्हारे लिए सामान भी मंगा के अच्छा रखा हुआ है। हाँ।
2: मैं अब्बू से माँ की बातें करना चाहता था, मतलब भाई के बारे में बहुत सारी बातें पूछना चाहता था, बहनों के बारे में उन्हें बताना चाहता था कि वो अपनी ना तमाम ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दुआएं मांगा करती थी। लेकिन अब्बू ने पाकिस्तान आने के बाद माजी की किसी बात को मेरे सामने न खोला, बस मुझे खर्चा चीजें देकर भिजवा दिया करते थे।
6: अबू मैंने बहुत अच्छे नंबरों से मास्टर्स कर लिया, अब मैं आगे पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ।
5: बेटा ये बताओ तुम कौन से मुल्क में जाना चाहते हो?
6: अबू मैं आला तालीम के लिए इंग्लैंड जाना चाहता
5: हूँ। अच्छी बात है, जरूर जाओ, लेकिन बेटे मेरी एक शर्त है।
6: शर्त अबू? वो क्या?
5: वो शर्त ये है कि तुम शादी के बाद जा सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, आपस की बात है
6: जी,
5: कोई लड़की वड़की है तुम्हारी नजर में?
6: अबू शादी के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। क्या बात कर?
5: तो बस फिर तुम इंग्लैंड भी नहीं जा सकते, मत सोचो उसके बारे में।
6: अबू नहीं,
5: सही बता दे, अगर कोई लड़की है तुम्हारी नजर में।
6: अबू देखें, बस लड़की पढ़ी लिखी और अच्छे घर की होनी चाहिए। मैं तो
5: बस बस बस बस ठीक है। तो मैं अपने दोस्त अहमद से है, उसकी बेटी वो सलीमा है ना, उसका रिश्ता मांग लूंगा। ठीक है
6: अबू, बहू आपकी पसंद से ही आएगी।
5: जीते रहो मेरे बेटे, जीते रहो, तुमने मेरा मान रख लिया। जीते रहो, जीते रहो।

0: दादा बू, आपको मेरी दादी अम्मा कैसी लगती थी?
1: बहुत भली औरत थी। वो जब मेरी जिंदगी में शामिल हुई तो मैं सोचने लगा कि जन्नत बिल्कुल ऐसी होगी मेरे घर जैसी।
0: अच्छा दादा बू, जरा सोचिए, अगर दादी अम्मा आपको ना मिलती तो?
1: अहमक भाई, ये उल्टे सीधे सवाल क्यों पूछ रहे हो? हैं? मैं ऐसी बातें नहीं सोचता। हैं? क्यों सोचूंगा भला मैं ऐसी बातें?
0: नहीं दादा बू, बताइए ना,
1: अगर वो मेरी जिंदगी में ना आती तो एक खला रह जाता। वो जितनी अच्छी बीवी थी उतनी अच्छी बहू भी थी। मेरे PhD के दौरान जब अबू की बीमारी की खबर मिली तो उसने मुझे कहा कि आप अपनी तालीम मुकम्मल कीजिए। मेरा बाप मेरे पास आने पर तैयार नहीं था, सलीमा ही उनके पास चली गई। मेरा 2 साला बेटा कामरान भी अपने दादा को देखने पाकिस्तान चला आया।
0: फिर तो आप बहुत अकेले हो गए होंगे ना दादा अब्बू?
1: नहीं, एक तो मुझे वालिद की तरफ से बेफिक्री हो गई थी कि सलीमा मुझसे ज्यादा उनका ख्याल रखती है और उनकी तीमारदारी करती है। अबू जब बहुत ज्यादा बीमार हो गए तो उन्होंने सलीमा से पूछा कि मैं चाहता हूं कि अपनी सारी जमीन उन लोगों में बांट दूं जो इस पर हल चलाकर अनाज उगाते हैं।
2: मैं आप सबको बहुत मिस कर रहा हूँ। सलीमा, अब्बू कैसे हैं? उन्हें साथ लेके आ जाओ भाई।
3: नहीं तौसीफ, अब्बू बहुत बीमार है, वो इस काबिल नहीं है कि सफर कर सके। भाई आपसे ज्यादा उन्हें मेरी जरूरत है और कामरान की भी जरूरत है। पता क्या, कामरान को देख कर ना वो आपका बचपन याद करते हैं।
2: अच्छा, कामरान कैसा है? हमारा प्यारा बेटा कामरान, उसे मेरा प्यार देना।
3: हाँ तौसीफ, एक एक बात पूछना थी आपसे मुझे। अबू कह रहे थे कि वो अपनी सारी जमीनें अपने मुजारों को देना चाहते हैं।
2: तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में?
3: जनाब, ये आप बाप बेटे का मामला है, भला मैं इसमें कौन होती हूँ बोलने वाली।
2: अच्छा, तो फिर अबू का जो भी दिल चाहे, भी जैसे उनकी खुशी।
3: ये मशवरा देती हूँ कि वो अपनी जमीनें अपनी खुशी से बांट दे।
0: तो फिर आप इंग्लैंड से कब वापस आए दादा अब्बू?
1: बेटे 8 साल बाद जब मैं वतन लौटा तो मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में नौकरी मिल गई। मैं बेहद खुश था, मैं अपनी आला तालीम से अपने नौजवानों के जहन बदलना चाहता था।
0: इंग्लैंड में तो आपको बहुत सी सहूलतें मिली होंगी दादा अब्बू।
1: हाँ, वहाँ की जिंदगी बहुत आरामदेह थी, हर सहूलत मुयस्सर थी। लेकिन मैं जब वतन लौटा तो मेरी आंखों के सामने वही मिट्टी की पोटली थी जो मेरा बाप मेरे लिए छोड़ गया था। मैं बाप की जमीनों को देखने के लिए गया इसलिए नहीं कि वो मेरी मलकियत हुआ करती थी, बल्कि इसलिए कि मेरे बाप ने बंजर जमीन को सरसब्ज कर दिया था। वहां रहने वाले दहकान हल चलाकर अपने लिए खुद अनाज उगाते थे। ये जमीन उनकी अपनी जमीन थी।

0: एक बात बताओ, आपस की बात है
1: जी।
0: कोई लड़की वड़की है तुम्हारी नजर में?
1: अब्बू, शादी के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। क्या बात कर?
2: तो बस फिर तुम इंग्लैंड भी नहीं जा सकते, मत सोचो उसके बारे में।
1: अब्बू नहीं,
0: सही से सही बता दे, अगर कोई लड़की है तुम्हारी नजर में।
1: अबू देखे, बस लड़की पढ़ी लिखी और अच्छे घर की होनी चाहिए। मैं तो
0: बस बस बस बस ठीक है। तो मैं अपने दोस्त अहमद से है, उसकी बेटी वो सलीमा है ना, उसका रिश्ता मांग लूंगा। ठीक है
1: अबू, बहू आपकी पसंद से ही आएगी।
0: जीते रहो मेरे बेटे, जीते रहो, तुमने मेरा मान रख लिया। जीते रहो, जीते रहो।
3: गुज़िश्ता इक़सात से सफ़र करती हुई हमारी कहानी यहाँ तक आ पहुँची। इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए सुनते हैं किस्त नंबर 5।
4: दादा बू, जब आप पाकिस्तान आ गए तो आपको इंग्लैंड की याद तो बहुत आती होगी।
0: नहीं बेटे, मैं पाकिस्तान आकर बहुत खुश था, इसलिए कि वतन ने जो कुछ मुझे दिया था अब उसे लौटाने की बारी मेरी थी। खुदा ने मुझे मौका दिया था कि मैं नए खून, नए जज्बों, नए जहनों को तहरीक पाकिस्तान के बारे में बता सकूं।
4: दादा बू, क्या उस वक्त भी लोग पाकिस्तान पर तनकीद किया करते थे?
0: हाँ मुझे याद है, हमारे घर दावत पर एक मियाँ बीवी आए। बीवी जर्क बर्क कपड़ों में मलबूस, हाथों में डायमंड की अंगूठियाँ सजाए बार बार कह रही थी, इस मुल्क में कुछ भी नहीं है। मैं चुपचाप उस औरत का चेहरा देखता रहा और लफ्ज़ मेरे अंदर मोम की तरह गिर रहे थे।
4: दादा बू, हमारे मुल्क में जिन लोगों के पास बहुत सी चीज़ें और दौलत होती है वही ऐसी बातें क्यों करते हैं?
0: हाँ बेटे, तुम ठीक कहते हो। मैंने उस औरत की तरफ देखा जो सोना चांदी और हीरों से लदी हुई थी। खाने की मेज पर दुनिया भर की नेमतें थीं जिन्हें वो प्लेट में भर भर कर खा रही थी। मुझे उस लम्हे मजहर की याद आई, दोनों बहनों की चीखें याद आई, मट्टी की वो पोटली याद आई जो मेरे वालिद ने सलीमा को अपने पास रखने के लिए दी थी।
4: दादा बू, लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं?
0: प्रकाश बेटे, मैं तो कुछ नहीं बोला, लेकिन तुम्हारी दादी सलीमा ने पता है उस औरत को क्या जवाब दिया? सलीमा ने कहा, किसी भी मुल्क में कुछ नहीं होता, हर मुल्क जमीन का एक टुकड़ा होता है, असल चीज उस जमीन के टुकड़ों पर बसने वाले लोग होते हैं, खामी हमेशा उन तनकीद करने वालों के अंदर होती है और फिर यही खामी उस मुल्क का तारुफ बन जाती है, साइन बोर्ड बन जाती है जिसे वो मुल्क उठाए उठाए फिरता है।

0: अबू जी आप उठिए, ये लीजिए, ये लीजिए अबू, ये पानी पी लीजिए। पानी पी लीजिए अबू।
1: अच्छा बेटे, अच्छा।
0: अबू जी अबू हौसला कीजिए।
1: बस बेटे, हौसला ही हौसला है सलीमा
0: जी। अबू जी,
1: बेटे मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी बेटियों ने मरते वक्त मेरी मजबूरियों का अंदाजा करते हुए मेरे लिए, मेरे सुख के लिए खास तौर पर दुआ की थी, तभी तो मुझे तुम जैसी प्यारी बहू, सुगड़ बहू मिली है।
0: अबू, अबू, अबू जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं जो कुछ कर रही हूँ ये मेरा फर्ज बनता है।
1: अच्छा था तो, अच्छा था।
0: अबू, अबू मगर आप ही ने तो कहा था कि वो पढ़ाई खत्म करके आना है उसे।
1: कहा तो था मैंने, लेकिन वो पता नहीं कब आएगा, कब आएगा।
0: अबू संभालिए अपने आप को।
1: आएगा।
0: अबू, अबू, अबू आप ठीक तो है ना?
1: मेरे बगैर उसे।
0: अबू, अबू ठीक तो है ना?
1: कैसा लगेगा?
0: अबू, अबू होश कीजिए। नहीं नहीं नहीं नहीं, अबू अबू ऐसा नहीं हो सकता।

0: तौसीफ।
1: हाँ
0: तौसीफ, एक बात पूछूं आपसे?
1: पूछो।
0: जब से आप वतन वापस आए हैं, यूं ही गुमसुम रहते हैं, आप इतने चुप चुप क्यों रहते हैं?
1: ऐसी कोई बात नहीं है, जाओ तुम नमान को लेके आओ, मैं खेलना चाहता हूँ उसके साथ।
0: जी अच्छा, अभी लाती हूँ। जाने ने क्या हो गया है, गुमसुम रहते हैं, अबू का जिक्र करती हूँ तो टाल देते हैं। शायद वो बाप का गम मुझसे शेयर नहीं करना चाहते। अरे आजो मेरा बेटा नौमान, मेरा बच्चा, आजो आजो आजो आजो, भाई पापा बुला रहे हैं आपको, आजो आजो। अरे अरे ले ले ले, चलो मेरा। ये लीजिए नमन।
1: हाँ। कितना प्यारा बच्चा है, क्या करना चाहते
0: हैं? अच्छा अब ऐसा है कि आप बाप बेटा खेले और मैं आपके लिए खाना लाती हूँ।
1: ऐसी नहीं यार, कितना अच्छा बच्चा है, बहुत दीपा बच्चा है।

0: critical kimene. अभी तो रात के 3 बजे हैं, रात के सिर्फ 2 पहर ही गुजरे हैं। ये लंबी काली रात जाने कैसे गुजरेगी, कैसे गुजरेगी।
1: सलीमा, तुम जाग रही हो?
0: जी हाँ, बस मेरी अचानक आंख खुल गई थी। आप अभी तक जाग रहे हैं?
1: आज नींद आंखों से शायद रूठ गई है, वक्त कट ही नहीं रहा। सुनियो, तुम कोई अच्छी सी बात सुनाओ।
0: है? अच्छी सी बात? अच्छी सी बात और क्या है? बस मैंने आज टीवी पर एक बहुत अच्छी फिल्म देखी थी।
1: अच्छा।
0: मैं तो बहुत हंसी। अच्छा, अगर आप कहें तो मैं उसकी कहानी सुनाऊं आपको।
1: नहीं नहीं नहीं, बस छोड़ो उसको। तुम मुझे ये बताओ, अपने दिन भर तुम क्या करती रही, क्या मसरूफियत तुम्हारी रही?
0: चले, हम आपको आज से दिन की बातें बताते हैं कि आपने पूरा दिन क्या किया है। सुबह आपके जाने के बाद मैंने बच्चों को स्कूल भेजा है, और उसके बाद नौमान ने और मैंने नाश्ता किया।
1: अच्छा।
0: फिर मैंने घर की सफाई करवाई है और आपके लिए खाना बनवाया। और अब आप और क्या पूछना चाहते हैं, और क्या बताऊं आपको?
1: अच्छा, तो नौमान क्या करता रहा इस सारे?
0: आज तो माशाल्लाह उसने आपको मुबारक हो, उसने घुटनों के बल चलना सीख लिया है।
1: अच्छा, अच्छा,
0: हमारा
1: अच्छा।
0: बेटा वैसे माशाल्लाह बहुत प्यारा है।
1: हाँ। सलीमा, अब्बा ने मुझे याद किया था मरने से पहले? तुमसे कुछ कहा उन्होंने मेरे बारे में?
0: आप यानी 10 माह की बात पूछ रहे हैं मुझसे?
1: मेरे बारे में अब्बा ने कुछ कहा था क्या?
0: हाँ, मैं अभी आती हूँ, अभी आती हूँ।
1: मैं सब कैसे सुनूंगा, कैसे सह पाऊंगा, कहाँ से लाऊं हौसला, कैसे उन लोगों को याद करूं जब मेरा बाप आहिस्ता आहिस्ता दुनिया छोड़ रहा।
0: ये लीजिए, ये आपकी अमानत है।
1: मैं इस कपड़े को कैसे भूल सकता? इस कपड़े में मेरी माँ, बहन और भाई की लाश आई थी। ये कपड़ा हमेशा अब्बा के कंधों पर होता था, फिर कभी नजर ना आया था, और आज नजर आया तो
0: ये पोटली भी लीजिए। उन्होंने ये पोटली देते हुए कहा था कि तौसीफ से कहना वापस जरूर आए।
2: तौसीफ बेटे, इस बात का हमेशा ख्याल रखना, किस पाक मिट्टी में पैदा होने वाले रिश्ते हजार से मैंने तुम्हारी परवरिश की है। अब तुम्हारा फर्ज है कि इस मिट्टी की हुर्मत को कभी पामाल ना होने देना, वरना बेटे याद रखो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा।
0: तौसीफ, आप रो रहे हैं। तौसीफ, हौसला करें, हौसला करें। तौसीफ,
2: मैं सारी उम्र हिंदुस्तान और कांग्रेस के गुण गाता रहा, मौलाना आजाद और सरदार पटेल के गीत गाता रहा, लेकिन मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए जो वसा छोड़ रहा हूं, वो उन लोगों के झूठे आदर्श नहीं बल्कि मेरी मंजिल तो मेरा पाकिस्तान था। ये एहसास मुझे मजहर के टुकड़े जमा करते हुए पहली बार हुआ कि मजहर की बुनियाद पर खड़ा दो कौमी नजरिया ही हकीकत है। बिल्कुल ठीक है, दो कौमी नजरिया बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं।

0: Bedeno, tavsi, açata tu, açata.
1: Abu, Abu, मगर आप ही ने तो कहा था कि वो पढ़ाई खत्म करके आना है उसे.
0: हाँ, कहा तो था मैंने, लेकिन वो पता नहीं कब आएगा, कब आएगा.
1: अबू संभालिए अपने आप को.
0: आएगा.
1: अबू, अबू, अबू, आप ठीक तो है ना?
0: मेरे बगैर उसे.
1: अबू, अबू, ठीक तो है ना?
0: कैसा लगेगा?
1: अबू, अबू होश कीजिए.
2: सलीमा, अब्बा ने मुझे याद किया था मरने से पहले. तुमसे कुछ कुछ कहा उन्होंने मेरे बारे में?
1: उन्होंने पोटली देते हुए कहा था कि तौसीफ से कहना वापस जरूर आए.
0: तौसीफ बेटे, इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि इस पाक मिट्टी में पैदा होने वाले रिस्क हजार से मैंने तुम्हारी परवरिश की है. अब तुम्हारा फर्ज है कि इस मिट्टी की हुर्मत को कभी पामाल ना होने देना.
3: गुज़िश्ता एक साथ में हमारी कहानी सफ़र करती हुई यहाँ तक आ पहुँची. इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए सुनते हैं किस्त नंबर 6.
4: वकास बेटे, भाई मैं तो बहुत थक गया हूँ यार. बस बस, अब मुझसे नहीं चला जाएगा. हाँ, मुझसे नहीं चला जाएगा. देखो
3: बेटे हैं किस्त नंबर 6.
4: वकास बेटे, भाई मैं तो

0: आया ने लंदन में शादी कर ली थी।
1: हाँ अरफा बहुत खूबसूरत, खानदानी, मुहज्जब और मिलनसार लड़की थी, लेकिन बेटे बेहद माता परस्त। वो दोनों जब अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान आए तो मैं और सलीमा खुश तो हुए, लेकिन बेटे
2: शाहिद बेटा देखो तुम मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते? देखो तुम्हारे अब्बू ने वहां की यूनिवर्सिटी, वहां की कारें, वहां के पॉन्ड्स सब छोड़कर यहां आकर पढ़ाना पसंद किया है बेटा।
3: लेकिन मामा दैट इज ग्रेट क्योंकि आपने उनका साथ दिया, लेकिन आरफा ने तो मुझसे इस शर्त पर शादी की है कि मैं हमेशा वहां रहूंगा और हमारे बच्चे भी वहां तालीम हासिल करेंगे।
2: बेटा मैं जब तुम दोनों बच्चों को पाकिस्तान लेकर आई थी ना तो एयरपोर्ट पर मेरा जी चाह रहा था कि मैं सजदा शुक्र अदा करूं। इस मुल्क पर अल्लाह की कितनी रहमतें हैं, बुलंद से बुलंद पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां, दूसरी तरफ रेगिस्तान और तीसरी तरफ समंदर, फल फ्रूट कीमती पत्थर, क्या कुछ नहीं है इस मुल्क में। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को क्या कुछ नहीं दिया।
3: लेकिन मामा मैंने फैसला कर लिया।
2: तो क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है यहाँ से जाने का?
3: माँ जो म्यारी जिंदगी मुझे वहां चाहिए वो यहाँ नहीं है।
2: शायद ये तुम क्या कह रहे हो, यकीनन मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई होगी। शायद तुमने ये सब कितनी आसानी से कह दिया है, तुमने ये भी नहीं सोचा कि माँ का मान टूट जाएगा, तुमने ये भी नहीं सोचा बेटा।
1: नईमा और तस्लीमा के शौहरों ने भी बाहर जाने में बेहतरी समझी। मेरी छोटी बेटी आलिया और मेरा बेटा नौमान हमारे पास पाकिस्तान में रहने लगे।
2: माशाल्लाह मेरा बेटा नौमान वर्दी में कितना खूबसूरत लग रहा है। आज मेरे बेटे के कंधों पर लगे सितारों ने सारा घर रोशन कर दिया है।
4: जी अम्मी जी, आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई।

0: सुनिए जी, अपना नुमान खैर से कप्तान हो गया है, अब इसकी शादी कर दें। आखिर लड़की वाले कब तक इंतजार करेंगे हमारा?
1: हाँ विजल माँ, कहती तो तुम ठीक हो। देखो ना, नुमान ने अपनी मर्जी का प्रोफेशन चुना और अपनी मर्जी की दुल्हन, तो फिर देर किस बात की। चलो आज ही ना लड़की वालों के घर चलते हैं। मैं तैयार होता हूँ और तुम भी जल्दी से तैयार हो, ठीक है?
0: ठीक है।
1: नुमान बेटे, आज मैं तुम्हें और तुम्हारी बीवी किरण को शादी के तोहफे के तौर पर जो चीजें दे रहा हूं वो तुम्हारा ही हक है, क्योंकि तुमसे ज्यादा कोई भी उसकी कदर नहीं कर सकता। ये मिट्टी की पोटली जिसमें मेरे भाई का लहू और पाकिस्तान बनने पर मेरे बाप का सिजदा शामिल है, इस मिट्टी की हिफाजत अब तुम्हें करना है।
2: अबू जी, इस शादी का सबसे खूबसूरत तोहफा ये मिट्टी ही तो है, और मैं ये कसम खाता हूं कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा।
3: अबू अम्मी, नुमान का सियाचिन से फोन आया है, जल्दी आइए।
4: नुमान का फोन आया? मैडम मैं आई बस अभी आई।
2: हेलो अबू, हेलो अम्मी जी, कैसे आप सब लोग? मैं अगले मोर्चों पर जाने वाला हूँ। अम्मी जी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी आरजू पूरी हो जाए।

0: करते हैं तो उनके बच्चे उनकी बीवियां कैसे रह लेते हैं?
1: अरे बेवकूफ, एक फौजी की बीवी और उसके बच्चे उतने ही बहादुर होते हैं जितना वो फौजी खुद होता है।
0: जी दादा अब्बू, मैं भी बहुत बहादुर हूँ। मैं अभी से सोचता हूँ कि अपने वतन के लिए कोई बहुत अच्छा काम कर सकूँ।
1: शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। काश ये फलसफा तुम्हारे ताया अब्बू को भी समझ आ जाए। उसकी माँ बहुत बीमार है।
0: चले दादा अब्बू, वापिस चलते हैं, बारिश होने वाली है।
1: हाँ, बादल बहुत घिर के आ रहे हैं। और बेटे चलते हैं। अल्लाह, शाबाश।

0: तौसीफ, जल्दी से ये बताइए कि आज सुबह वाक पर जाते हुए आपने सबसे पहले क्या दुआ मांगी थी? आज आपकी दुआ खुदा ने सुन ली है।
1: दुआ मैंने मांगी थी? अरे सलीमा, मेरी दुआ तो इस वतन के लिए है और अपने बेटे नौमान के लिए।
0: और शाहिद के लिए?
1: शाहिद? वो तो लंदन में बैठा पौंड से अकाउंट भर रहा है, माता परस्त।
0: शाहिद वापस आ रहा है।
1: क्या शाहिद वापस आ रहा है? मगर कैसे?
0: सुबह का भूला शाम को आ जाए वापस तो उसे भूला नहीं कहते। वो फोन पर बता रहा था कि कल स्कूल में उसके बच्चों को एक अंग्रेज बच्चे ने मारा है, उन्हें बेवकूफ बाकी कहा है। शाहिद जब स्कूल वालों से एहतजाज करने गया और उसने कहा कि वो बच्चे मेरे बच्चों से माफी मांगे, तो टीचर कहने लगा कि वो इस मुल्क का शहरी है, तुम नहीं, तुम सेकंड सिटीजन हो। ये सुनकर शाहिद ने वापस आने का फैसला किया है।
1: सलीमा, सलीमा तुम कहती थी ना कि तुम्हारी तरबियत में कुछ कमी रह गई है, ये शायद उनके दादा का विरसा यानी वतन से मोहब्बत इन तक पहुंच नहीं सका, तो तुम गलती पर थी।
0: हाँ मैं जानती हूँ, शायद कुछ लम्हे के लिए भटक गया था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ है कि इज्जत की जिंदगी वतन से बाहर नहीं बल्कि अपने वतन अपने पाकिस्तान में है।
1: तुम ठीक कहती हो सलीमा। अच्छा तुम ऐसा करो कि शाहिद के लिए एनेक्सी खाली करवा लो। और हाँ, ये किरण और वकास भाई कहाँ चले गए ये लोग?
0: छोटी बच्ची की तबीयत खराब है, रात भर नहीं सोई, जागती रही है। हाँ वो मैंने वकास को बुलवाया है ताकि बच्ची की माँ आराम से सो सके।
2: दादा अबू, मामा और मुन्नी फिर सो गए हैं।
1: भाई उनकी तबीयत खराब है। और ये पोटली तुम्हारे पास, भाई ये तुमने क्यों ली?
2: दादा अबू, अबू सियाचिन गए हैं ना, वो जाते हुए मुझे दे गए थे।
1: अच्छा, और क्या कहा था नुमान ने?
2: दादा अबू वो कह रहे थे कि बाकी अपने दादा अबू से पूछ लेना, वो बता देंगे।
1: हाँ सच कहा था उसने, कितनी आसानी से इस पोटली ने नस्लों का सफर तय कर लिया।
0: आप परेशान क्यों हो रहे हैं? हर बाप अपना विरसा अपने बेटे को ही तो देता है।
2: दादा अबू, बाबा का खत है, मेरे नाम लिखा है, आप भी पढ़िए।
1: अच्छा लाओ मुझे दो। वकास बेटे, मैं जहां बैठा हूं मेरे इर्द गिर्द बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ। कल मैं एक जगह से गुजर रहा था, मेरे साथी जो मेरे साथ साथ चल रहे थे उनमें से एक कहने लगा कि यहां से गुजरते हुए दरूद पाक का वर्द करना जरूरी है। मैं कुछ देर बाद उनसे आगे निकल गया तो यही बात किसी ने मेरे कान में कही। मुड़कर देखा तो मेरे साथी मुझसे दूर थे। ऐसे मुझसे यहां होते रहते हैं।
2: बाबा बहुत ऊंची जगह पर है ना, अल्लाह के करीब दादा अब्बू।
1: हाँ मेरे, हाँ

0: हेलो जी, मैं बोल रहा हूँ नोमान का वालिद जी। आप हेडक्वार्टर से बोल रहे हैं जी? जी क्या कहा? नोमान वतन की हिफाजत करते हुए शहीद हो गया?
1: अरे तेरा तेरा शुक्र है मौला। वो जाते हुए कह रहा था, माँ माँ मेरे लिए शहादत की दुआ करना। मैं कैसे ये दुआ देती, पर उसे तो हम सबसे ज्यादा वतन से मोहब्बत थी।
2: दादा, दादो आप रोइए मत, मेरे पापा शहीद हुए। दादो, दादा ना रोइए प्लीज।
0: हाँ, उसने मट्टी का कर्ज उतार दिया है। खुदाया तू गवाह रहना, मैंने अपना एक बेटा वतन की नजर कर दिया।

0: अब्बा ने मुझे याद किया था मरने से पहले तुमसे कुछ कुछ कहा उन्होंने मेरे बारे में?
1: उन्होंने ये पोटली देते हुए कहा था कि तौसीफ से कहना वापस जरूर आए।
2: तौसीफ बेटे, इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि इस पाक मिट्टी में पैदा होने वाले रिस्क हलाल से मैंने तुम्हारी परवरिश की है। अब तुम्हारा फर्ज है कि इस मिट्टी की हुर्मत को कभी पामाल ना होने देना।
3: ये मिट्टी की पोटली जिसमें मेरे भाई का लहू और पाकिस्तान बनने पर मेरे बाप का सिजदा शामिल है, इस मिट्टी की हिफाजत अब तुम्हें करना है।
4: अबू जी, इस शादी का सबसे खूबसूरत तोहफा ये मिट्टी ही तो है और मैं ये कसम खाता हूं कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा।
3: हेलो जी, मैं बोल रहा हूँ नौमान का वालिद जी, आप हेडक्वार्टर से बोल रहे हैं जी? जी क्या कहा? नौमान वतन की हिफाजत करते हुए शहीद हो गया?
1: अल्लाह तेरा तेरा शुक्र है मौला, वो जाते हुए कह रहा था माँ मेरे लिए शहादत की दुआ करना।
3: खुदाया तू गवाह रहना, मैंने अपना एक बेटा वतन की नजर कर दिया।
5: गुज़िश्ता एक साथ में हमारी कहानी सफ़र करते करते यहाँ तक आ पहुँची। आइए आज सुनते हैं इस खेल की आखिरी किस्त।

0: दादा अब्बू बारिश आने वाली है, चलिए वापस चलते हैं।
1: हाँ भाई वकास, आज फिर बारिश आने वाली है, लेकिन बेटे वापसी का सफर तो शुरू हो चुका है ना?
0: दादा अब्बू मुझसे कदम मिलाकर चलिए ना, तेज चलिए वरना आप हार जाएंगे।
1: वकास बेटे, तुम मेरा मुस्तकबिल हो, मेरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल। अपने मुस्तकबिल को कौन हराना चाहता है भाई? मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम बढ़ते रहो आगे, मजीद आगे।
0: दादा अब्बू आप घर तो चलिए, मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा।
1: सरप्राइज? भाई वकास इस उम्र में इतना इंतजार नहीं कर सकता, बस अब बता दो ना क्या सरप्राइज है, हमें भी तो पता चले कि हमारी आज की नई नस्ल हमें क्या सरप्राइज देना चाहती है।
0: दादा अब्बू ये तो घर चलकर ही पता चलेगा, चलिए मेरा हाथ पकड़िए, मैं पाकिस्तानी बच्चा हूँ जनाब, हम आहिस्ता चलने वालों को भी साथ लेकर चलते हैं।
1: हाँ भाई वकास, अब मेरा सांस फूलने लगा है, अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा सहारा लेना ही पड़ेगा। मगर ये साथ लेकर चलने वाली बात तुमने किससे सीखी?
0: ये मैंने अल्लामा इकबाल की एक नज़म से सीखी है, आगे बढ़ो तरक्की करो मगर सबको साथ लेकर, खासकर आहिस्ता चलने वालों को।
1: अच्छा,
0: आजकल मौसम कितना अच्छा हो रहा है दादा अब्बू।
1: हाँ हर साल इस महीने में सब्जा नहा धोकर नया पैरहन पहनता है, बारिश जमीन की सारी कसाफत धो डालती है। खुदा ने पाकिस्तान की तखलीक के लिए इसी महीने को चुना जिसमें हर चीज दोबारा से ताजा हो जाती है। बिल्कुल इस तरह हमारे जज्बात भी जवान हो जाते हैं।
0: जिस तरह ये पौधे दरख्त बारिश से नए नए लग रहे हैं, इसी तरह हरी झंडियों से सजा चलती रोशनियों के साथ पाकिस्तान भी अच्छा लग रहा है ना दादा अब्बू।
1: हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं।

0: अबू जी, मैं कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ। अमेरिका से बड़ी अच्छी ऑफर आई है।
1: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटे तुमने सोचा क्या है आखिर?
0: अबू जी, ऑफर तो बहुत अच्छी है।
1: अच्छा, तो फिर तुम क्या चाहते हो?
0: मैं सोचता हूँ कि ऑफर कबूल कर लूँ, बहुत पैसा है। मगर अबू, मैंने अपने आप से वादा किया है कि मरने के बाद दफन अपनी मिट्टी में ही होऊंगा। आखिर मैं भी इसका बेटा हूँ।
1: शाहिद, शाहिद, ये सोचकर तुम अपने आप को तसल्ली दे रहे हो कि तुम पाकिस्तान के वफादार हो बेटे। पाकिस्तान को तुम्हारे ताबूत की नहीं, तुम्हारे जवान खून की, तुम्हारे जज्बों की जरूरत है।
2: आप कहते थे कि मैंने इसकी तरबियत बहुत अच्छी की है। देखा आपने, ये फिर बाहर जाने की बातें कर रहा है। शायद तुमने तो कहा था कि मैं बाहर दूसरे दर्जे का शहरी नहीं बनना चाहता, फिर तुमने क्यों सोचा ऐसा?
0: अम्मी अबू, आप तो यूं ही नाराज हो रहे हैं। मैंने तो सरसरी से जिक्र किया था। आप देखिए कि ये हमारी कितनी बड़ी कामयाबी है कि दुनिया भर में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के लिए हमें बुलाया जाता है। क्या ये कोई कम कामयाबी है? हमने तरक्की याफ्ता ममालिक के माहिरीन को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे छोड़ दिया है।
1: लेकिन बेटे, हमारे लोग अपना तजुर्बा, अपनी जहानत अपने मुल्क को देने के बजाय इस पर तनकीद करते हैं और फायदा दूसरे ममालिक को पहुंचता है। तुम्हें इतना पढ़ाने का मकसद पाकिस्तान की सरबुलंदी था, ये तो नहीं कि तुम अपनों को भूल जाओ।
2: ये असल में अपने अंदर की कमजोरी है जिस पर पर्दा डालने के लिए हम अपने वतन को इल्जाम देते हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि जो पाकिस्तान में नाकाम हो जाता है ना, वो बाहर भागने की कोशिश करता है। क्या शायद तुम नाकाम हो गए हो?
0: नहीं, मैं नाकाम तो नहीं हूँ।
3: शाहिद भैया, आइए वकास के कमरे में चलते हैं। वकास आज हम सबको सरप्राइज देना चाहता है।
0: किरण भाभी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं आपके लिए बहुत फिक्रमंद रहता हूँ और आपकी भाभी भी आपके लिए बहुत सोचती हैं।
3: शहीद की बीवी हूँ, मेरे हौसले और हिम्मत में कभी कभी नहीं आ सकती। आइए चलें। वकास बेटे, दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारे दादा अबू, दादी और ताया अबू आए हैं।
4: 1, 2 और 3 लीजिए, दरवाजा खुल गया।
1: वाह भाई वाह वाह, मेरे बेटे ने कितना खूबसूरत कमरा सजाया है। तुमने ये सारी झंडियां कब मेरे कमरे से निकाली? और ये नुमान की तस्वीर, ये कब बड़ी करवाई?
3: देखे नुमान, इस तस्वीर में कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये मेडल इस डिब्बे में ठीक है ना?
1: ये सितारा जुरत के लिए शीशे का बॉक्स कब बनवाया?
4: असल सरप्राइज तो अब सामने आएगा, आप सब आंखें बंद कर लीजिए जनाब। ये देखिए, मुझे पाकिस्तान का झंडा बनाने पर स्कूल से शील्ड मिली है।
1: ये शील्ड मेरे बच्चे की पहली कामयाबी है और मुझे फख्र है कि मेरे बच्चे ने पहली कामयाबी इस वतन के निशान की वजह से हासिल की है।
4: दादा बू, मैं सारा दिन ये सोचता रहता हूँ कि मैं अपने मुल्क, अपने वतन की खिदमत कैसे कर सकता हूँ, अपने मुल्क का नाम कैसे रोशन कर सकता हूँ।
1: बेटे, पाकिस्तान का हर बच्चा यही सोचता है और यही सोचना भी चाहिए, बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया जाए। देखो ना, जो भी काम हिस्से में आए उसे ईमानदारी के साथ पूरा किया जाए, हाँ कोई कुछ भी कहे। अच्छा, मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ, और ये वाकया है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को।
4: हाँ दादा अब्बू, मुझे पता है, वो आग गुलजार बन गई थी।
1: हाँ, लेकिन बेटे उस आग के गुलजार बनने से पहले एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी लाकर उस आग पर डालती थी। एक परिंदे ने पूछा कि एक कतरे पानी से तुम आग बुझा पाओगी? चिड़िया ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन जब मुझसे पूछा जाएगा कि मैंने उस वक्त अपना हक किस तरह अदा किया, तो मैं फख्र से कह सकूंगी कि मैंने अपने हिस्से की आग बुझा दी थी। तो बेटा इस तरह हमें अपने हिस्से का काम मुकम्मल दयानतदारी, खलूस और बेगरज होकर सरंजाम देना चाहिए।
4: जी दादाबू, मैं समझ गया। इस कहानी का मकसद है कि हम सबको अपने हिस्से की आग बुझाकर अपने वतन को बनाना संवारना है।
1: हाँ,
4: मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी मुकम्मल दयानतदारी और खलूस से अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दूंगा और इस मुल्क के नेक नामी के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा।
1: शाबाश, बेशक आज पाकिस्तान को इसी जज्बे की जरूरत है।
2: देखो नुमान, तेरा बेटा कितना समझदार हो गया है।
1: वकास, तुम मेरे दोस्त, मेरे साथी हो। तुम जानते हो ना कि सुबह की सैर तुम्हारे बगैर मैं नहीं कर सकता।
4: जी दादाबू, मैं ये भी जानता हूँ कि आपने अब्बू का सितारा जुरत और ये पोटली मेरे लिए रखी है।
1: हाँ बेटे, तुम इसके अमीन हो। कल तुमने, नई नस्ल ने पाकिस्तान को कायद आजम के तसव्वुर के मुताबिक बनाना है।
2: हमारी कुताहियों को माफ करना बेटा। हमारी इस नस्ल से कोई कुताही हुई है तो इसका मदावा तुमने करना है।
4: आप फिक्र ना करें, ये नूर का मस्कन है, हमेशा जिंदा रहेगा।
1: हाँ सलीमा, वकास ठीक ही तो कहता है, ये नूर का मस्कन है, ये हमेशा रोशन रहेगा।
2: हाँ,
1: ये नूर का

सफे पलटो जरा किस खाको खूबे चलते हुए किस आग के अंदर चलते हुए जंजीर दुखों की तोड़ाए आवाज करो को छोड़ाए।

उन्होंने कहा कि अगर मैं इसके बाद फिर कोई बात पूछूं यानी एतराज करूं तो मुझे अपने साथ न रखिएगा कि आप मेरी तरफ से उज्र के कबूल करने में गायत को पहुंच गए।

तो खाओ और पियो और आंखें ठंडी करो। अगर तुम किसी आदमी को देखो तो कहना कि मैंने अल्लाह के लिए रोजे की मन्नत मानी, तो आज मैं किसी आदमी से हरगिज कलाम नहीं करूंगी।